ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े
कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रज मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है।

उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानूं क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे। उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी शिरानी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम की। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को। वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच ही थकान बन जाए तो उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। आज हम बात करेंगे इसी हैबिट की जो चुपचाप हमारी पीस डिस्टर्ब कर देती है। हेलो हाय, शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया और बीके ज्योति जी। वेलकम मैम।
1: थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, आज ओवरथिंकिंग इतनी कॉमन क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत है या फिर स्ट्रेस और फियर का रिजल्ट है?
1: आज अगर हम कहें तो ज्यादा सोच इसलिए चल रही है क्योंकि हम शांति की परिभाषा को भूल ही गए हैं कि हम कैसे शांत रहें। आज हमें लगता है कि हमें अपनी बात बोलने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना भी है, और क्योंकि हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर आज हमारे चारों तरफ बहुत है तो उसके कारण भी हमारी सोच जो है वो ज़्यादा चल रही है, और ये ज़्यादा सोचना कहीं ना कहीं बाद में जा कर के वो स्ट्रेस का ही रूप बन जाता है। वही ओवर थिंकिंग ही जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना मल्टीपल

अंदर तो पता ही नहीं चलता। आप कई बार देखेंगे कई व्यक्ति शांत बैठे हैं और उनसे पूछो आप क्या सोच रहे हैं, तो कहते हैं हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे सोचने की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है थॉट की कि हमें ये भी पता नहीं होता है कि हम इस समय सोच क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बहुत तेज ट्रेन चल रही है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट है, तो बाहर क्या गया हमें ये पता नहीं चलता है। बाहर कौन सा स्टेशन पास हो गया, कौन सी चीजें पास हो गई, वो हमें नहीं पता चलती है। सेम ऐसे ही हमारे थॉट की भी स्पीड जो है वो इतनी हो गई है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम सोच भी रहे हैं और क्या?

0: रिलैक्स करता है, उस टाइम तो हम सो रहे हैं, और जिस टाइम हमें एक्चुअल में सोना चाहिए उस समय हम अपने माइंड को और वेस्ट थॉट्स में बिजी कर देते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल पर, हमारे हेल्थ पर भी उसका इश्यू बनता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: प्रिया जी, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका माइंड रात को ज्यादा एक्टिव हो जाता है
2: जी।
1: ओवर थिंकिंग का स्लीप और मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है
2: जी? पहले तो जैसे कि बात हुई कि रात को ओवर एक्टिव हो गया है, ज्यादा एक्टिव हो गया है, और ज्यादा माना ही ओवर एक्टिव हो गया है। रात को माइंड को एक्टिव होना चाहिए या शांत होना चाहिए?
1: शांत
2: होना चाहिए। और तो इसका मतलब मैं उल्टी दिशा में हूँ, और उल्टी दिशा में हूँ तो फिर रिजल्ट्स भी उल्टे ही आएंगे। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ओवरथिंकिंग का स्लीप और मेंटल हेल्थ से कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मेरी नींद नहीं हो रही है, और नींद एक ऐसी प्रभुदेन गिफ्ट बोली जाती है, इट्स अ गॉड गिफ्ट, जो कि एक उम्र के बाद धीरे धीरे कम होती है, और उसी वजह से काफी हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। और देखा भी गया है कई साइंटिफिक जो टेस्ट किए गए हैं कि अगर एक नेचुरल स्लीप नहीं आती है, जो यंगस्टर्स भी आज अल्कोहलिक हो चुके हैं तो उसके नशे में सो रहे हैं, या कई हैं जो प्रॉब्लम्स की वजह से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, लेकिन उनके उठने के बाद वो खुद बोलते हैं कि बहुत थकावट है, सर में दर्द है, जी मचला रहा है, मन अच्छा नहीं है, भारी भारी फीलिंग है। यानी नेचुरल नींद जो हमें एक गॉड गिफ्ट है, जो बॉडी को पूरा रिलैक्स करती है, हमारा इम्यून पावर बूस्ट करती है, माइंड को फ्रेश करती है, हमारा मूड स्टेबल करती है, बहुत सारी चीजें हमारी नींद से जुड़ी हैं। और अगर उस दौरान मैं सोच रही हूँ, बहुत सोच रही हूँ, तो सही नहीं है। फिर कई कहते हैं हम दिन में सो लेते हैं, लेकिन जो ऊर्जा मुझे रात में मिलती है वो रात को जो होना चाहिए ना, एक सर्कल जो ह्यूमन सर्कल बनाया गया है, रात इज फॉर स्लीपिंग, तो वो चीज जो है वो नेचर के साथ अगर पैटर्न में रहती है तो ज्यादा सही रहती है। आजकल के बच्चे हम देखते हैं वो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, उनका कहना ये है कि दिन में शोर है
1: जी।
2: और रात को बहुत शांति सी रहती है, लेकिन आप अगर डीप में देखें तो रात में भी वो कान में बहुत जो कहें कि ईयर प्लग्स है ना, या एयरफोन्स लगा करके गाने बहुत लेवल पे सुन करके फिर वो पढ़ रहे होते
1: जी।
2: तो शोर तो कहीं ना कहीं है ही, लोगों का नहीं है तो कान में गानों का शोर है, लेकिन वो कहते हैं उसमें हमारे को हो जाता है, सेटिंग किया है हमारा हो जाता है। तो हम सेटिंग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमने वैसी सेटिंग क्यों की है? और अगर हमने वैसी सेटिंग की है तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स हैं ही। और साइंस भी ये मानती है और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह का साइन, यानी सुबह जो उठ करके किया जाता है उसकी पावर, उसके रिजल्ट्स जितने हैं वो बहुत ट्रेमेंडस हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मैम।
0: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: बहुत लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हम इमोशनली वीक हैं, या फिर ये एक नॉर्मल ह्यूमन पैटर्न है। आप दोनों का इस पर क्या कहना है?
2: ये तो आज की डेट में वैसे तो ये कोई ह्यूमन पैटर्न नहीं है, ये हमने अपना ऐसा बना दिया है आज की डेट में। आज की डेट में लोगों का ये कहना गलत नहीं है कि हाँ ये पैटर्न बन गया है, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा सोच रहा है। एक्चुअल में पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके अलावा भी थॉट्स हैं जिसको हम कहते हैं वेस्ट थॉट्स।
1: ओके।
2: और आज की डेट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव से ज्यादा वेस्ट थॉट्स चलाते हैं।
1: जी।
2: फॉर एग्जांपल, हम मॉर्निंग में अगर जल्दी नहीं उठे तो अभी हमारा नेगेटिव चलना कैसे शुरू हो जाता है? वेस्ट पहले चलता है, आज हम लेट हो गए। अब उसके बाद फिर वो जब एक्सेस होता है तो फिर लगता है कि आज हमारा ये काम रुक जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हम दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इनकी वजह से लेट हुए, ये काम हुआ, रात को हम पार्टी में थे या रात को हम देरी से सोए थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे, अब उस समय हमें ये करने की बजाय जितना टाइम हमारे पास बचा है उसको मुझे कैसे मैनेज करना है, इससे हम कहते हैं कि हमने थॉट को मैनेज किया। माना हमारी ओवर थिंकिंग नहीं चली, लेकिन हमने उसको एक सिस्टम में लेके आए। लेकिन आज की डेट में लोग इसको नेचुरल मान रहे हैं कि अच्छा ऐसा तो थॉट चलेंगे ना सबके, लेट हो गए हैं तो ये हो गया, तो यही ओवर थिंकिंग का हमने आज पैटर्न बना दिया है। और इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है करने के लिए, सिर्फ हमें क्या करना है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी अगर आप कहें तो मैं सुना सकती हूँ। तो एक बहुत अच्छी एक पंडित थे, एक गुरु जी थे, और उनके पास एक राजा ने जाके कहा कि मुझे जो है ध्यान सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठिए और बैठ जाएं शिष्यों के साथ, और बैठें और आंख बंद कर लें और ध्यान की अवस्था में चले जाएं। थोड़ी ही देर में बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगा। तो जैसे ही आंधी तूफान आना शुरू हुआ तो सारे शिष्य भागने लगे, वो भाग गए। राजा ने आँख खोली तो राजा ने भी देखा कोई भी शिष्य नहीं है, वो भी भाग लिए। थोड़ी देर के बाद वो तूफान थम गया और फिर सभी आकर के बैठ गए, लेकिन उन्होंने देखा गुरु जी कहीं नहीं गए। तो राजा ने उनसे पूछा गुरु जी से कि आप सारे आपके शिष्य चले गए थे, मैं भी भाग गया, आप क्यों नहीं भागे? उन्होंने कहा कि आप भी भागे, शिष्य भी भागे और मैं भी भागा। तो उन्होंने कहा आप तो नहीं भागे, आप तो यहीं बैठे थे। बोले आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा, मैं भीतर की तरफ गया। तो सेम ऐसे ही जब हम अपने अंदर में हमारी सोच को कभी हम चेक करें, हम हमेशा ही बाहर के लोगों की सोच में रहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हम इसको ही, यही ओवर थिंकिंग है।
1: जी।
2: तो सबसे जरूरी है इसको अगर हमें कम करना है तो पहले हम खुद के अंदर जाएं, खुद के थॉट पर थोड़ा सा रिसर्च करें कि मेरे थॉट एटलीस्ट चल क्या रहे हैं, और अगर चल भी रहे हम नहीं जजमेंट कर पा रहे तो अपने आप को कुछ अच्छी अफर्मेशन दें जिससे कि हमारा जो थॉट लेवल है उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी और हमारा जो है वो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और रिलेशन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल सही।
3: जी, जैसा कि ज्योति जी ने कहा, बहुत सुंदर और एग्जांपल दिया कि पैटर्न तो हम खुद बना रहे हैं। और मैं देखती हूँ इस समय जो विशेष अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें हर चीज़ हम ही क्रिएट कर रहे हैं, चेंज एक लेकर आ रहे हैं हर चीज़ में, जो नेचर का है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ह्यूमन नेचर है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, हर चीज़ में चेंज ला रहे हैं। लेकिन एक वर्ड जो आया कि ओवर थिंकिंग क्या इमोशनली वीक होना है, तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। जो ओवर थिंकर्स हैं वो इमोशनली वीक हों ऐसा नहीं है।
1: जी।
3: जो बहुत बड़ी कंपनीज रन करते हैं कई बार वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत स्टेबल वो हम देख पाए आते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि फ्रंट साइड तो वो बहुत स्टेबल है लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में वो काफी शेकिंग उनका रहता है।
1: हाँ जी।
3: वो एक अलग हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो ओवर थिंकर्स हैं वो ओवर जो कहें कि उनका इमोशनली वीक, ऐसा नहीं है। लेकिन ह्यूमन पैटर्न भी नहीं है, ओवर थिंकिंग इज नॉट अ ह्यूमन पैटर्न। हमारा ह्यूमन पैटर्न वही है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अपने पूर्वजों का देखा, या जो हम अपने देवताओं या इष्टों का, या जो हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने जो पैटर्न दिया है, साइंस आज उसको बिल्कुल सही मानता है। जैसे नीचे बैठकर चौकड़ी मारकर भोजन करना, या फिर फॉर्नर्स के द्वारा लाया हुआ डाइनिंग टेबल चेयर्स पे बैठ के चम्मच से खाना खाना।
1: जी।
3: तो आज हम सभी जानते हैं कि कौन सा बेस्ट पैटर्न है, जबकि हम सबके घरों में डाइनिंग टेबल्स हैं और हम सभी चावल जो है वो चम्मच से खा रहे हैं, लेकिन द बेस्ट वे टू ईट द चावल इज बाय हैंड्स। कि हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें जो वो रस निकलता है, जो भी केमिकल सिक्रेट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। तो लाइफ पैटर्न जो है वो हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छे से क्रिएट करके वो हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, इट्स गुड। बट लेकिन अगर हम उन चीज़ों को भी इन्वॉल्व रखते हैं तो हमारे को बेस्ट या हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, जो भी सोशली, हम ज्यादा बेनिफिट प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट। प्रिया जी, एंगर, गिल्ट या रिग्रेट जैसे इमोशंस ओवरथिंकिंग को कैसे ट्रिगर करते हैं?
1: जैसे मुझे गुस्सा आया, सिंपल सी बात है।
0: हाँ जी,
1: गुस्सा मैं यूं ही नहीं कर देती, मैंने मन में जरूर, जैसे ही आपने मुझे कोई ऐसे वर्ड्स बोले जो ट्रिगर कर गया,
0: हाँ जी,
1: मैं पहले से ही उन चीजों को स्टोर कर चुकी थी जो आपने पहले कहे होंगे
0: जी,
1: और वो चीज स्टोर का लेवल इतना हाई हो गया कि बस अब ढक्कन खुलने ही वाला है, सीटी बजने ही वाली है, और आपने फिर से प्रेशर डाल दिया है। तो प्रेशर डालना मीन्स ओवरथिंकिंग
0: जी।
1: ठीक है, तो अगर मेरे अंदर वो गुस्सा पहले से जो मैंने स्टोर किया हुआ है और बार बार जब मैं सोचे जा रही हूँ, तो ये सोच एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने जो स्टडी किया, जो मैंने बेसिकली रिसर्च किया है कि सोच अगर जिस दिशा में आप लेने लगते, किसी भी दिशा में, आप एक से दो दिन, दो से हफ्ते भर, 15 दिन, आप कोई भी एक ऐसी चीज सोच लीजिए जो आपको बिल्कुल लगती है बेतुकी है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आप सोचने लगते हैं, जो शास्त्रों में भी एक कहानी है जो मैं भी एक सुनाना चाहूंगी छोटी सी, एक भक्त को एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और वो भक्त बहुत भोला, बुद्धू जो हम कहें वो था, और गुरु ने कह दिया कि तू तो भैंस है, तो उसने इसको मंत्र की तरह ले लिया, वो अपने घर चला गया और अपने घर में उसने रात भर यही गुंजन किया, उसे अफर्मेशन, सेल्फ एस्टीम की तरह ले लिया, मतलब अच्छे रूप में लिया कि मैं भैंस हूँ। और जब सुबह उसकी माता ने उसे पुकारा कि बाहर राजा बाबू, तो पिता ने पुकारा, तो उसने कहा मैं भैंस हूँ और ये चौखट बहुत छोटी है, मैं इसके बाहर नहीं आ सकता, आप चौखट बड़ी करो। तो माना एक सोच, जो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है और हमको लगता है बड़ा बेतुका है, पर नहीं, एक सोच जिसको आप पूरी रात भर सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा एक चेंज ले आती है हमारे माइंड वर्ल्ड में। और माइंड ही एक्चुअली जो कहते हैं कि जैसे एक आइसबर्ग होता है, बर्फ होता है, 90 नीचे है और 10% विजिबल होता है, यानी जितना छोटा वो दिख रहा है वो उतना होता नहीं है, उसका पूरा विशाल जो साम्राज्य है वो नीचे होता है जो दिख नहीं रहा। और यही माइंड गेम है कि जो हम ऊपर दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अंदर दफन है सब कुछ, जो हमें विजिबल कई बार नहीं होता है
0: जी।
1: तो इसीलिए अगर मैंने रात भर जो सोचा है, जो कि मुझे दिख रहा है, मैंने रात भर ही सोचा है, लेकिन अंदर उसने पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया होता है और उस फ्लो में फिर मैं बहने लगता हूँ। जैसे हम देखते हैं जो सुसाइड करने वाले होते हैं, वो एक दिन में सुसाइड डिसाइड नहीं करते, लेकिन ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं कि उनको सुसाइड ईजी लगने लगता है
0: जी।
1: और जब मैंने कुछ दिन ये चीज देखी, किसी की ऐसे फील की कि कैसे वो लोग इस दिशा में पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ 2 दिन ही आप इस ट्रैक में अगर सोचने लगते तो 3रा दिन आपके लिए इजी होता है इन सबको सोचने में
0: जी।
1: एंड इट्स रियली डेंजरस, रियली वेरी वेरी डेंजरस। तो इसीलिए जैसे क्वेश्चन है कि हमारे को गुस्सा, जो एंगर है, गिल्ट है, रिग्रेट है, ये कैसे जो है ओवरथिंकिंग करता है
0: जी।
1: तो क्योंकि ये सारी चीजें नेगेटिव है और नेगेटिव की स्पीड स्लो होती है या फास्ट?
0: फास्ट।
1: तो अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव, जैसे पॉइजन है और अमृत है, आप अमृत चखते हैं तो उसका पूरे लाइफ में क्या इफेक्ट है, और आप एक जहर पी लेते हैं या कोई एक गंदी आदत आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसका इफेक्ट आप देखिए कि नेगेटिव का बहुत सुपर फास्ट है। तो जब मैं नेगेटिव में हूँ, यानी गुस्सा कर रहा हूँ या मेरे को कोई गिल्ट फील आ गई है या रिग्रेट हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी होने की वजह से बहुत स्पीड मेरे अंदर क्रिएट कर देता है, और वो स्पीड मेरी पहले कहाँ आ रही है, थॉट लेवल पर, तो ये ओवरथिंकिंग को वो ट्रिगर करता है, बिल्कुल बढ़ा देता है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए भी बहुत सारे रास्ते जो हमें करने चाहिए, लेकिन विशेष ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को स्टॉप करना जानूं कि मेरे को नहीं इतना सोचना है, जो हो गया वो हो गया,
0: बिल्कुल,
1: और मैं सोच कर उसको अभी भी हो रहा है ऐसा प्रेजेंट में ला रहा हूँ, पास्ट इज पास्ट, वो डन हो चुका है, मैं उसे अब चेंज नहीं कर सकता, इट इज रिटन समवेयर, मेरी डेस्टिनी में लिख गया, लेकिन अभी भी अगर मैं उसी फ्लो में फ्लो कर रहा हूँ, यानी सोच रहा हूँ, तो आई एम स्टिल राइटिंग इट,
0: बिल्कुल,
1: और यानी मैं अपनी जो मेरे को जो भी मिलने वाला उसका रिजल्ट, उसको मैं एक्सेस में एनलार्ज कर रहा हूँ,
0: बिल्कुल।
1: तो जो पाप किया या गलत किया या नेगेटिव किया, उसका एक अगर सजा है, तो अगर मैं उसको अभी भी सोच रहा हूँ तो मैं 10 गुना उसको इंक्रीज कर रहा हूँ,
0: बिल्कुल।
1: तो इट्स बेटर टू स्टॉप इट, क्योंकि वो जो गलत हुआ वो गलत हुआ, अब मुझे उसे कैसे ठीक करना है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो आई कैन चेंज माई डेस्टिनी इन फ्यूचर
0: जी, बिल्कुल सही बात है। यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवर थिंकिंग पर डिस्कशन जारी रहेगी, रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: ज्योति जी, कौन सी डेली हैबिट ऐसी है जो ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है?
2: ओवरथिंकिंग की हैबिट को थिंकिंग ही कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है।
1: बिल्कुल।
2: अगर हम सुबह सुबह अपने आप को थॉट दे देते हैं पॉजिटिव, सुबह उठते के साथ ही हमें अपने आप को थॉट देना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक्चुअल में देखें तो हम सब पीसफुल हैं। आप पूरा दिन किसी भी व्यक्ति को गुस्से में नहीं देखेंगे,
1: बिल्कुल,
2: है ना, लेकिन पूरा दिन चुप रहने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल।
2: इट मीन्स कि हमारे अंदर वो पीस तो है
1: जी,
2: लेकिन बस हमने उसको पहचाना नहीं है
1: जी।
2: हमने लोगों की इतनी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले ली है और टू मच इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी भी कर रहे हैं
1: जी।
2: जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम ये नहीं कहते कि इन्फॉर्मेशन नहीं आपको लेनी है, लेकिन एटलीस्ट सुबह सुबह अपनी मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे थॉट डाल दें, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें, जैसे कि अभी प्रिया जी ने अमृत और विष की बात कही। अगर आप सुबह सुबह अमृत डाल लेते हैं, पाँच कोई अच्छे थॉट कुछ भी अपने लिए, जो भी आपको लगता है कि आज पूरे दिन के लिए मुझे अपने लिए चाहिए, जैसे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कुछ भी ऐसे थॉट दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए
1: जी।
2: हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक और चीज़ की है जो हमारी थॉट बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमें अपने लिए अच्छे थॉट करने ही नहीं आते। अभी हम किसी को अगर बोलते हैं कि आप खुद को ब्लेसिंग दें तो हम क्या दे सकेंगे?
1: बिल्कुल।
2: तो वो उसी चीज को हमें बस ब्रेक करना है, अपने लिए कुछ अच्छा, सिर्फ मेरे लिए, कि मेरा पाथ जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ खुशियाँ हो।
1: बिल्कुल।
2: ये अपने लिए है, जिसको भी मैं मिलूँ उसको खुशी मिले
1: जी,
2: ये अपने लिए है, है ना, मैं सदा स्वस्थ रहूँ ये अपने लिए है।
1: बिल्कुल।
2: है ना, ये चीजें छोड़ के हमने कहाँ गए, है ना, बहुत सारे पैसा हो, राइट, पैसा होना चाहिए आज सबकी, आपका ही नहीं, शायद आज की किसी भी जनरेशन से हम पूछेंगे तो यही एक पहला प्रेफरेंस रहता है उनका,
1: मनी
2: मनी। लेकिन वो पैसा कमा भी हम क्यों रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हमने अपना मकान बना लिया,
1: ओके,
2: हमारी नीड्स है, ठीक है, हमने अपना मकान बना लिया, हमें एक वेल सेटल्ड, हमें जॉब मिल गई है, हमें एक अच्छा परिवार भी मिला हुआ है, हमारा मकान भी अपना है और अच्छा जैसा हम चाहते हैं। आज हमने अगर गाड़ी ऑल्टो ली है तो कल मुझे मर्सिडीज चाहिए, कल हमें आईटोन जो कहें कि ऑडी चाहिए, और भी जो भी नाम है ना, वो सारी हमें, हमारी वो डिज़ायर्स बढ़ रही है
1: जी।
2: लेकिन वो सारी चीज़ें अगर मिले, फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाए कि आपको सब कुछ हम देंगे
1: जी,
2: बस आप एक कमरे में बैठ जाइए, पॉसिबल
1: नहीं,
2: रिलैक्स होंगे बिना कुछ किए भी हमें सब कुछ मिल रहा है फिर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए
1: जी।
2: कहीं ना कहीं हमें उन पैसों से

0: उसका रीजन आज अगर पूछते हैं, हमने एक बार एक जगह पर किया कि हमने पूछा कि आप अपने आप से बताएं कि आपकी लाइफ में 25 मेंबर्स थे और उनसे कहा गया आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोगों की क्या आप लिस्ट निकाल सकते हैं जो आपके लिए फेथफुल हो, जिनको आप अपनी हर बात शेयर कर सके, क्या ऐसे लोग आपके पास है? तो 99% लोगों का नो में आंसर था कि नहीं है हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जिसको हम अपनी हर बात शेयर कर सके या हर एक चीज कह सके। तो क्यों नहीं है? क्योंकि रीजन, अब हम यहाँ पे लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं वो ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हमने अपने आप से पूछा मैं विश्वास पात्र हूँ?
1: बिल्कुल।
0: क्या मैंने किसी का फेथ जीता है, या हम भी सुनते हैं और कहीं और पास ऑन कर देते हैं? तो सबसे जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर चाहिए क्या, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए हमें पहले चाहिए पीसफुल, और वो हम हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सिर्फ मुझे रियलाइज करना है, उसे याद करना है। मुझे चाहिए हैप्पीनेस, वो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे वो याद करना है और उसके लिए वो सुबह सुबह अपने मेमोरी में डालना है, तो अपने आप हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाए।
1: बिल्कुल सही।
2: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, अगर ओवर थिंकिंग किसी को हो रही है वो ये चीज करे तो
0: जी।
1: बट हमें पता कैसे चलेगा कि हम इससे धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
2: जी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी इसमें कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं
1: जी,
2: तो हमारी सांसें ज्यादा हो तो रिलैक्स माना जाता है या कम हो तो रिलैक्स माना जाता है। यस, स्लो हो लंबी हो तो उसे रिलैक्स माना जाता है। तो आपको कभी भी चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है जो हम करते हैं सबके साथ ही, कि आप अपनी नॉर्मल सांसें 60 सेकंड्स में काउंट कर लीजिए कि आपने कितनी ली है, और उसके बाद आप आधा घंटा अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए कि मैं पीसफुल सोल हूँ। आप बहुत सूदिंग गाने, फास्ट ट्रैक के गाने नहीं, सूदिंग गाने जो मेडिटेशन के लिए स्पेशली रिकमेंड किए जाते हैं, फ्लूट का जो अब धुन है वो सुन सकते हैं, बर्ड्स चिपरिंग है या सी शोर वेव्स का जो साउंड है वो ट्रैक चला करके आप थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेशन में रखें। मिनिमम हाफ एन आवर रखें तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आप 10-5 मिनट्स भी रखते हैं तो उसके रिजल्ट है। उसके बाद फिर से 60 सेकेंड्स आप अपने ब्रेथ काउंट कीजिएगा, इसमें बहुत फ़र्क आएगा। ये हम करते हैं, इसमें बहुत आपको इंस्टेंट पता चलता है कि आपके ब्रेथ जो होते हैं, सांसें जो होती हैं वो बहुत कम आ जाती है। कईयों की तो 16-9 आ जाती है, कईयों की 25-9-10 आ जाती है, तो ये इंस्टेंट होता है। और इसीलिए अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपके बॉडी में भी आपको चेंजेस फील होते हैं, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी एक साइन है कि यू आर नॉट इन ओवर थिंकिंग, क्योंकि रिएक्ट करना भी ओवर थिंकिंग है। आपने बहुत सोचा मैंने इंस्टेंट सोचा और इतना सोचा और फटाफट उसका रिएक्शन दिया
1: जी।
2: तो एक मेडिटेशन जो रेगुलर बेसिस पे करता है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, उसका जल्दी से टेम्परेचर हाई नहीं होता, वो जल्दी से बहुत जल्दी से रिएक्ट माना बात करके रिजल्ट्स आउट कर देना और हर चीज़ों को जल्दी जल्दी डील नहीं करता है। जो रेगुलर मेडिटेशन करता होगा वो बहुत रिलैक्स्ड होगा। उसका भोजन करने का स्टाइल आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो उनका स्टाइल देख लीजिए, तो वो हर जगह जो होगा वो बहुत संभल के, इन द सेंस मैं ये नहीं कहती बहुत स्लो हो जाएगा
1: जी,
2: वो हर काम करेगा लेकिन उससे पहले से वो बेहतर करेगा, पहले से बेहतर वो रिलैक्स्ड है, अपने आप में कंटेंटमेंट उसे फील होगी।
1: बिल्कुल,
2: कि उसको लगेगा कि अरे ठीक है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसे नेगेटिव हुआ है लेकिन उसको नेगेटिव डील करने का भी पावर मिलता है। पावर इन द सेंस वो अपने आप को उस समय स्टॉप करेगा और आगे चलकर अपने आप को उस चीज को दोबारा से सोचना वो नहीं रखेगा, सोचेगा नहीं
1: जी।
2: जो कि हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन किया था कि हमारे पास जो रिग्रेट हुआ या हमारे को जो भी गिल्ट फील हुआ, तो वो उस गिल्ट से भी अपने आप को ईजिली निकालने की क्षमता रखेगा। ये मेडिटेशन का एक कहें कि ऊर्जा कहो या मिराकल कहो, ये क्षमता रखता है मेडिटेशन कि आपको उस हर जोन से बाहर निकालता है जो जोन नेगेटिव कहे जाते हैं।
3: जो भी मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि अभी प्रिया जी ने बताया, जो भी मेडिटेशन करते हैं एक तो उनकी वो हैप्पीनेस मिल जाती है, वो बड़े खुश रहेंगे और उनका एक ऑरा जो है ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कई बार आपने फील भी किया होगा आपके फैमिली में भी आपने कई बार कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास बैठ के बड़ा सुकून फील होता है और वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड होते हैं। हम उनको देख करके कहते हैं कि आप तो बहुत रिलैक्स हैं, और किसी किसी का और ऐसा होता है कि उनके पास बैठते ही हम शांत भी हों तो हमें गुस्सा आ जाता है
1: जी।
3: है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑरा जो बना हुआ है नेगेटिविटी का, तो वो चीज़ मेडिटेशन करने वालों का जो ऑरा होता है वो अपने आप में पॉजिटिव बन जाता है।
1: बिल्कुल।
3: और पॉजिटिव उनके पास में जो आते भी हैं लोग, उनको भी वो पॉजिटिविटी फील होती है। वो जहाँ भी जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, जो मेडिटेशन करने वाले हैं या पॉजिटिव रहने वाले, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे।
1: बिल्कुल।
3: ये उनकी पहचान होती है कि वो डिस्टर्बेंस नहीं है। इसको अगर हम शास्त्रों के हिसाब से अगर हम बताएं या किसी तरह से, तो उसमें ये कहा जाता है कि योगी शीतल काया वाले, माना उनके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत काम होंगे
1: जी,
3: और अंग अंग उनका शीतल होता है, और जो भी उनके संपर्क में आता है वो भी शांत हो जाता है। इसीलिए हमें, क्योंकि हम हैं पीसफुल, हमें चाहिए भी शांति है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उसे कहाँ? बाहर
1: जी।
3: जरूरत है उसको अपने अंदर ढूंढने की, अपने अंदर जाने की, और उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है,
2: है। तो ये मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ हमें 5 से 7 मिनट भी अगर हम देते हैं तो हम बहुत अच्छा अपने आप को रिलैक्स भी कर पाते हैं और वो हम खुद फील करेंगे। एक मैंने आपको योगी की बात बता दी या मेडिटेशन करने वालों की बात बता दी, लेकिन एक आप जब खुद करते हैं उनका जीवन आप देखेंगे कि बैलेंस्ड रहता है
1: जी।
2: ऐसा भी नहीं है कि जो मेडिटेशन करते हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो काम धंधा छोड़ के बैठ गए हैं। ये भी नहीं है कि भाई वो 24 घंटे बस प्रभु की कोई माला जप रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ सोचने का पैटर्न पॉजिटिव हो जाता है
1: जी।
2: बस उनका नज़रिया पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। वो दूसरों को चेक करने के बजाय, दूसरों को जजमेंट देने के बजाय मुझे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को भी मेडिटेशन ज़रूरी है। आप देखते हैं साइंटिस्ट जो हैं वो बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं। अगर आपने डॉक्टर स्टीफन का नाम सुना होगा तो उन्होंने भी अपने जो ऑर्गन्स उनके थे कंट्रोल में उसको उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने कभी भी और लोगों को ब्लेम नहीं किया कि इनकी वजह से इनकी वजह से इनकी वजह से। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि अपने जो ऑर्गन्स उनके कंट्रोल में थे। मेडिटेशन का मतलब भी यही है कि आपकी जो चीज़ कंट्रोल में है आप उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। और वो तब होगा जब मुझे पता होगा मेरे पास क्या है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को तो चेक करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो मेडिटेशन करने वाले लोग बैलेंस्ड होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, वो हर एक परिस्थितियाँ जब भी आती हैं किसी भी तरह की तो उसमें अपने आप को मोल्ड करना वो जानते होते हैं।
4: आज के डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि हमें हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसे एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ਕਹਿੰਦੀ
1: ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।

0: होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

होगा दिल तेरा लिख ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: मजाक मत बनाओ।
1: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
0: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू आजा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब

0: नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
0: सुनो सुनो है न,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले। सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी सक्सेस से नहीं बल्कि अपने इम्पैक्ट से याद किए जाते हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हिम्मत भी चाहिए होती है। हे आई एम मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी वुमन की कहानी जिन्होंने उस वक्त एक चैलेंजिंग फील्ड चूज की जब वहाँ वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज किया। एक इंजीनियर, एक ऑथर, जिनकी कहानी हमें बताती है कि असली सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट तक नहीं सीमित होती बल्कि जब आपकी मेहनत और नॉलेज किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए तब वो सक्सेस मीनिंगफुल बन जाती है। तो आज संघर्ष की कहानी में हम सुनेंगे कैसे इंस्पायरिंग जर्नी जहां स्ट्रगल है, करेज है और एक पर्पस के साथ जीने की कहानी भी है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: बोलो सिमी बहन जी, तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए, हाय वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। वो हैं सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को सिंह गांव कर्नाटका में हुआ था। बचपन से ही उनका कनेक्शन बुक्स और लर्निंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हबली से कंप्लीट की और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। और 1970s के दौर में जब इंजीनियरिंग फील्ड में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ करती थी, तब सुधा मूर्ति ने इस फील्ड में अपनी जगह बनाई। वो टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली फीमेल इंजीनियर्स में से एक बनी। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, एक मैसेज था कि टैलेंट और डेडिकेशन के सामने बैरियर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और आप अगर कुछ नया चूज करते हो कुछ करने के लिए, तो उस चीज में आगे आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो कहानी में आगे क्या हुआ और उन्होंने आगे कहानी में अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाया, हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 FM. आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका. और लिसनर्स, हर इंस्पायरिंग जर्नी में एक मोमेंट आता है जब इंसान डिसाइड करता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या होगा. और सुधा मूर्ति जी की जर्नी भी सिर्फ करियर सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रही. उन्होंने टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेने के बाद सोसाइटी के लिए काम करने का रास्ता चूज किया. 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज में काम किया गया. सुधा मूर्ति ने राइटिंग की दुनिया में भी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई. उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है और उनकी बुक्स जैसे वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, 3000 स्टीचर्स एंड ग्रैंडमा बैग्स ऑफ स्टोरीज रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही हैं. उनकी राइटिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि सिंपल स्टोरीज के थ्रू उन्होंने काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यूज को हाईलाइट किया है. उनकी जर्नी के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज तब और पावरफुल बन जाती है जब वो दूसरों के लिए काम आए. तो किस तरह से सुधा मूर्ति जी की जर्नी आगे बढ़ी, हम सारी बातों पे बात करेंगे बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड द होस्ट मोनिका। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की कहानी से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लेसन मिलता है कि लाइफ में सक्सेस पाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सक्सेस के लिए अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे यूज करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। और अगर चैलेंजेस आए तो उन्हें अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का चांस समझिए, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स किसी भी ऑर्डिनरी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे थे संघर्ष की कहानियां ऑन रेडियो महारानी। और आज का शो मेरा लास्ट शो है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आप रेडियो महारानी के थ्रू और भी इंस्पायरिंग जर्नी सुनेंगे और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनेंगे किसी और होस्ट एंड दोस्त के साथ। फिलहाल आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका कर रही है शाइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। तो मुलाकात तो नहीं होगी, पर अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और आपकी कोई विश है, कोई इमोशंस है या कोई फीलिंग्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मोनिका लेती है आप सभी से विदा और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए।

0: कहते हैं ना, दिल सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए भी हेल्दी होना चाहिए। इसी के साथ वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जुवंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जरूरी बातें आप तक लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर और हर फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी मेंस हार्ट हेल्थ। और अगर बात की जाए हार्ट अटैक और हार्ट डिसीजेस, तो ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि यंग एज में भी इसके काफी केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज जानेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, और साथ ही क्या वो वार्निंग साइन है जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरविंद फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। तो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में मेंस हार्ट हेल्थ की, और अगर बात की जाए हार्ट हेल्थ की तो राइजिंग हार्ट अटैक दिस इज इन यंग मैन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर डॉक्टर, अगर हार्ट अटैक की बात की जाए तो पहले हार्ट अटैक को सिर्फ बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल की एज में भी हार्ट अटैक के केसेस काफी बढ़ गए हैं। सर डॉक्टर, आप ये बताइए कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, और साथ ही जितने भी यंग मैन आज हमें सुन रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो पोषण की पाठशाला। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू लिसन दीज क्वेश्चंस जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, जो यंगस्टर्स में आजकल एक फियर डेवलप हो गया है। मानिए कि यंग पेशेंट्स हम लोग आज से 10 साल पहले तक इतने हार्ट के नहीं देखते थे जितने आज की डेट में देखना शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ भी आती है और हम लोग अपनी कैथ लैब में इमरजेंसीज में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि 30 साल के, 25 साल के तक, 18 साल के तक पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है। इस चेंज का क्या कारण है? सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपने 10 साल की प्रैक्टिस में रियलाइज़ किया है, वो ये है कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मतलब आज से 20 साल पहले इतने यंग एज में स्मोकर्स नहीं देखे जाते, आजकल की डेट में कॉलेज से लेके, इनफैक्ट कभी कभी मैं स्कूल के बच्चों को भी स्मोकिंग करते हुए देखता हूँ। दिस वन सिंगल थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन यंग मेल्स, स्पेशली फीमेल्स भी खैर स्मोकिंग करती हैं बट फिर भी कम कॉमन है, बट मेल्स की स्मोकिंग जो हार्ट अटैक करा रही है, और ये यंग एज के हार्ट अटैक्स हैं, ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट कैन किल यू एनी टाइम। इसके अलावा भी बहुत कारण रहते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक, जिसे कहेंगे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, जिसमें कि कार्डियोमायोपैथीज, चैनलोपैथीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां जो कि फैमिलियल चल रही होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं मानता हूँ।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, यानी बढ़ती लाइफस्टाइल और हमारी रोज की आदतें हार्ट हेल्थ पर सीधा असर डाल रही हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉमन मिथ है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिक ब्रेक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ की। सो डॉक्टर, अगर हार्ट डिजीजेस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे मिथ एंड रियलिटी है हमारे आसपास, इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम यंग हैं और फिट दिखते हैं तो हार्ट डिजीज का कोई रिस्क ही नहीं होता, तो डॉक्टर क्या ये सच में सही है? और साथ ही यंग एज में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की हेल्दी हैबिट जरूर अपने आनी चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसा इंसान दिख रहा है बाहर से, अंदर भी क्या उसका शरीर स्वस्थ है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर जो है खाली स्किन से ही पता चल जाता है, स्किन के ग्लो से पता चल जाता है कि हेल्दी है, बट अगर ये अंदर कई बार ऐसी बीमारियां पनप रही होती हैं जिनको हम लोग कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें लगता है हम हेल्दी हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम साइलेंट किलर कहते हैं। हमारी स्टडीज में देखा गया है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन व्हिच इज अनकंट्रोल्ड, मतलब कि हर चौथा बंदा जो है उसको बीपी की बीमारी है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये बीपी अगर लंबे समय तक रहता है तो पहले 5-6 साल कुछ नहीं कहता है, पर धीरे धीरे अंदर से शरीर को खोखला करता जाता है। ऐसी और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर हम स्क्रीन नहीं करें, जिनको हम चेकअप नहीं कराएं रेगुलर, तो धीरे धीरे बॉडी को खाएंगी। इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर बाद में जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी।
0: तो डॉक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज आपने हमें समझाई है, सिर्फ फिट दिखना ही हेल्दी हार्ट की गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं उन वार्निंग साइन की जिन्हें टाइम रहते पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर भी बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: Nine point six FM.

0: शानाज ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। तो डॉक्टर आप बात करेंगे वार्निंग साइन वी शुड नेवर इग्नोर। तो डॉक्टर अगर बीमारियों की बात की जाए ना, तो हमारी बॉडी कई बार हमें बहुत पहले से सिग्नल देना शुरू कर देती है, लेकिन हम उन सभी सिग्नल्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर करने लगते हैं। ये बताइए हार्ट अटैक के वार्निंग साइन क्या होते हैं? साथ ही अगर किसी इंसान को कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं अपनी बॉडी में, तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, हार्ट अटैक का सिम्टम मैं अगर क्लासिकल सिम्टम बोलूं तो एक छाती पे दबाव, उसके साथ बाजू में भी ये दबाव जाना और गले में भी इसी दबाव का महसूस करना, ये एक क्लासिकल सिम्टम्स है। ये एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, मतलब खूब सारा पसीना आना, घबराहट होना, इम्पेंडिंग डूम जिसे कहते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरी मौत आ गई, ये वाली फीलिंग क्लासिकल सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूट करती है हार्ट अटैक के। पर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, मतलब एक तिहाई पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं। सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, किसी की धड़कन बढ़ रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन नहीं होते हैं हार्ट अटैक में। तो मेरे विचार में ऐसा कोई भी सिम्टम जो अनयूजुअल लगे, जो उनको पहली बार महसूस हो, जिससे उनको कि डर लगे, घबराहट हो, तो जरूर नजदीकी अस्पताल में एक बार ECG कराना चाहिए। बिकॉज आप, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि उम्र नहीं रही इस बीमारी की, अब मानिए कि पोस्ट कोविड कह लीजिए, वैक्सीन का असर कह लीजिए, या स्मोकिंग का असर कह लीजिए, या हमारे लाइफस्टाइल का चेंजेस कह लीजिए, पर इसकी कोई उम्र नहीं रही। बट हाँ, 25-30 साल के बाद ये बीमारी किसी को भी हो सकती। तो ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो जरूर नजदीकी अस्पताल में इमरजेंसी जाके ECG कराएं।
0: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, यानी इमरजेंसी के वक्त सही इन्फॉर्मेशन और तुरंत एक्शन किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो फिर इसी बात पर लाइफस्टाइल का रोल और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसको भी समझेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अभी बाकी है जून का जुनून। इस आग उगलती गर्मी से अगर खुद को है बचाना तो पानी को अमृत समझ पी जाना।
1: साथ आसमां जी रे, अब साथ समंदर पी रे, चल साथ सुनो में कर दे ये ऐलान।
2: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान। डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। सो डॉक्टर, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ की, बिकॉज कहा जाता है लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस, लेट नाइट रूटीन, जंक फूड और एक्सरसाइज की कमी, ये सब हमारा खराब लाइफस्टाइल का पार्ट है। ऐसे में ये सब हमारे हार्ट को किस तरह इफेक्ट करता है, और साथ ही अगर किसी को सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज से शुरुआत करनी हो तो वो किन चीजों से शुरुआत कर सकता है?
1: थैंक यू अंजलि, आपने बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा है। आजकल की जनरेशन के साथ जो कॉरपोरेट लाइफ के साथ जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है वो इज रियली डेंजरस एंड हार्मफुल टू आवर हार्ट। एंड मैं मानता हूँ कि लाइफस्टाइल में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है गुड फूड विच मीन्स बैलेंस्ड फूड, गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज। ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बिना हम लोगों की लाइफ कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लाइफस्टाइल में स्लीप से, क्योंकि आजकल एक तो नाइट शिफ्ट्स हैं कॉर्पोरेट में, लेट वर्किंग आवर्स हैं, इसके बाद लोगों के नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, इसके कारण बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन इन स्लीप साइकिल हो रही है। लोग कभी सैटरडेज को 2 बजे सो रहे हैं और कभी अपने ऑफिस आवर्स में सो रहे हैं। जो स्टडीज में देखा गया है, अगर आप अपनी स्लीप के ड्यूरेशन को 7 आवर्स टू 9 आवर्स के बीच में नहीं रखते हैं, मतलब 7 आवर्स से कम सोते हैं, 9 आवर्स से ज्यादा सोते हैं, दोनों ही केसेस में हार्ट रिस्क बढ़ता है। दूसरा, नॉट ओनली द नंबर ऑफ आवर्स यू स्लीप, ऑल्सो द पैटर्न इन विच यू स्लीप मैटर्स। मतलब अगर मान लीजिए आप रात में 7 घंटे 12 से 7 सोते हैं, तो अगर उसमें आप ऑल्टर करके उसको 2 से 9 भी कर देते हैं तो भी रिस्क बढ़ता है। तो मतलब अगर 2 घंटे से ज्यादा ऑल्टर होता है स्लीप का टाइमिंग ड्यूरेशन जब आप सो रहे हैं उस टाइम, तो वो भी रिस्क बढ़ाता है। तो एक रेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप, हाँ वेरिएशन ऑफ 1/2 आवर 1 आवर चलता है, पर एक रेगुलर पैटर्न और एडिक्वेट स्लीप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग स्लीप हाइजीन के नाम से कहते हैं। दूसरा, डाइट। देखिए कॉर्पोरेट में या कहीं भी आजकल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतनी जॉब्स ट्रैवलिंग वाली हैं, बाहर खाना पड़ता है, बट यू हैव टू पिक वाइजली, बिकॉज बाहर का तला हुआ खाना और लॉट ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट रिच, लॉट ऑफ शुगर रिच ड्रिंक्स या फूड, ये सब इतनी कॉमनली अवेलेबल है आजकल बाहर में, और हेल्दी ऑप्शंस अभी भी हमारे कंट्री में बहुत कम है, और इफ यू वांट तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कहीं भी उनको ऑफिस जाना है तो ऑफिस के लंच अगर तो हेल्दी बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बट नहीं मिलता है अगर तो डेफिनेटली कैरी फ्रॉम योर होम, लर्न टू कुक हेल्दी फूड, लर्न टू ऑलवेज रीड द लेबल्स ऑफ द ड्रिंक्स विच यू कंज्यूम, उसके पीछे देखे कितनी कैलरीज है, कितनी शुगर है। तो ये सब चीजें आपको अवेयर करेंगी और आप फिर उन ड्रिंक्स को या उन फूड को अवॉइड कर पाएंगे। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट aspect of healthy diet. Life के लिए healthy exercise, adequate exercise, which I would call as 30 minutes of minimum good level exercise. Now, not 30 minutes of टहलना. 30 minute टहलने से दोस्त बनेंगे, heart health नहीं अच्छी होगी. पर अगर आपको अच्छी heart के लिए exercise करनी है तो 30 minutes of brisk walking is bare minimum. इससे sleep भी अच्छी आएगी, cholesterol levels भी घटेंगे, body weight भी maintain होगा, and you will feel fit and energetic also and positive because of good hormones.
0: डॉक्टर से कहा जाता है छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, और जब बात लाइफस्टाइल की हो तो न्यूट्रिशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है, और इसी बारे में बात करेंगे लेकिन वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरचेंचली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ डाइट फॉर अ हेल्दी हार्ट, तो वो क्या होनी चाहिए? और अक्सर पोषण की पाठशाला में हम न्यूट्रिशन की बात जरूर करते हैं, क्योंकि सही पोषण ही अच्छी सेहत की बुनियाद होती है। तो डॉक्टर, ये बताइए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डेली डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूर शामिल होनी चाहिए, और साथ ही किन फूड्स को लिमिट या अवॉइड करना चाहिए?
1: डाइट में आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, एक साइंस है उसके पीछे। पर मेरे सबसे मूल चीज समझने वाली ये है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है खाने की, वो समझना सबसे जरूरी है। आज की डेट में प्लेट में जितना भी पड़ा है उसको खा लेना ठीक नहीं है, अपनी डाइट काउंट करनी जरूरी है। तो आमतौर पे एक फीमेल को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए और एक मेल को 2500। सो इस कैलोरी काउंट से हम लोग अगर चलें और इसको डिवाइड करें, कि ऐसा नहीं कि ये जो कैलोरीज हैं ये सारी की सारी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लें, तो अराउंड से 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए। इसमें भी जो फैट 20% है उसमें 6% या 7% ही अराउंड घी वाला, जो सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं, घी हो सकता है। तो ये एक बैलेंस डाइट कॉन्स्टिट्यूट करती है। और इसके अलावा हमें अगर ज़्यादा अपने डाइट को, मतलब पेट को भरने लायक डाइट बनाना है, तो उसमें हमें ऐड करना चाहिए रफेज, जैसे सलाद हो गया और इसी तरह की प्लांट बेस्ड चीज़ें, जो कि हम लोगों का पेट भरें पर ज़्यादा कैलोरीज ना दें। ये तो हुई बात कैलोरीज की। और अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है दिन में 2 स्पून या 3 स्पून से ज्यादा हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो इट्स नॉट गुड फॉर फॉर योर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डायबिटीज में रिस्क बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेट बढ़ता है और हार्ट का रिस्क भी बढ़ता है। तो शुगर्स को इज द न्यू पॉइजन कहा जाता है आजकल। तो जो व्हाइट थिंग्स हैं, सॉल्ट, व्हाइट

डॉक्टर, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है। सही डाइट न सिर्फ हार्ट को हेल्दी रखता है बल्कि कई सीरियस डिजीजेस का रिस्क भी कम कर सकता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर, अब बात करते हैं साइलेंट किलर्स एंड रेगुलर चेकअप्स की। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है, सो ऐसे में इनका हार्ट डिजीज से क्या कनेक्शन है और साथ ही किस एज से रेगुलर हार्ट चेकअप्स कराना शुरू कर देना चाहिए?
1: ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है अंजलि। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, हमारे जो लोग हैं उनको नहीं पता ये बात कि 20 साल की उम्र से हर साल इंसान को अपना बीपी नापना चाहिए। साल में एक बार ही सही, पर बीपी नापना जरूरी है। उसमें अगर रीडिंग ज्यादा आए तो बार बार भी नापना चाहिए, पर अगर वो नॉर्मल है तो अगले साल नापना चाहिए। तो बीपी को मेजर हमेशा 20 साल की उम्र से हर साल करना चाहिए नियमित तौर पे, क्योंकि बीपी ज्यादा होने के कोई सिम्टम्स नहीं आते। कोई लोग कहते हैं कि बीपी से सरदर्द हो गया, पर यूजुअली बीपी से सरदर्द तभी होता है जब बीपी 200 के पार चले जाता है, और तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तो बीपी को जरूर नापें हर साल। हर एक यंग आदमी जो कि हेल्दी भी महसूस करता है, जिसको कोई तकलीफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसे हर साल बीपी नापना चाहिए। दूसरा आपने बोला डायबिटीज, आमतौर पर यूजुअली रिकमेंडेशन कहती है कि 30 से 35 साल के बाद हर साल शुगर नापना है, पर मैं इसमें डिफर करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल बन गई है वर्ल्ड की, मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी इंडिया में है आज की डेट में। तो ऐसे में हम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रिवेंशन के लिए 25 साल से 30 साल के बीच में हर साल शुगर नापना शुरू करना चाहिए, और अगर शुगर ठीक आ रहा है तो साल साल पे नापें। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को 20 साल से नापें, एक बार 20 साल पे नाप लें, अगर ठीक आता है तो हर 4-4 साल पे भी नाप सकते हैं, पर बीपी और शुगर हर साल पे नापें 20-25 साल की उम्र से।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, रेगुलर चेकअप्स और टाइम पर डायग्नोसिस बहुत सी प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और फटाफट से आज ही अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, एक चेकअप कराइए और अपना ध्यान रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जा।
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, ट्यूबलाइट
2: गिर गया। साले इतने हंसाए, तू कूद गया?
3: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी कूद मेरे साथ।

0: शानदार सुरेख के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर, आज हमने पोषण की पाठशाला में जाना है किस तरह से मेंस को अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हेल्दी हार्ट की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो आज आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ ही आज से ही अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनका डेली ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए।
1: 5 हेल्दी हैबिट्स। द फर्स्ट वन डेफिनेटली ऑन माय लिस्ट इज अ गुड 5-7 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड देन सेकंड गुड हैबिट इज गुड हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक एट लीस्ट। थर्ड, गुड ईटिंग हैबिट्स व्हिच कंस्टिट्यूट्स ऑफ बैलेंस्ड गुड प्रोटीन डाइट, एंड फोर्थ, गुड मेंटल हेल्थ विच इंक्लूड्स डी-स्ट्रेसिंग योरसेल्फ विद मेडिटेशन, योगा, एंड फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप स्मोकिंग। थैंक यू वेरी मच अंजलि, एंड इट वॉज ग्रेट टाइम। आई होप आई वॉज यूजफुल टू यू एंड एवरीबडी लिसनिंग।
0: जी डॉक्टर, तो दोस्तों आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हेल्दी हार्ट सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल और सही न्यूट्रिशन से भी बनता है। यानी छोटे छोटे चेंजेस जैसे बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और टाइम पर हेल्थ चेकअप करवाना हमारे दिल को लंबे टाइम तक हेल्दी रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज हमें रेडियो महारानी के पोषण की पाठशाला में ज्वाइन किया डॉक्टर अरविंद, अ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। फिलहाल अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर ये ट्रैक। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नसीहत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 बाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती।

ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सुरक्षा नहीं अपनों की खुशियों की गारंटी है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सोचिए, एक कंसर्ट चल रहा है, हजारों लोग गा रहे हैं हम रहे या ना रहे कल, और स्टेज पर खड़ा इंसान जिसका गाना अमर हो गया, खुद उस रात हमेशा के लिए अमर हो जाता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। ये कहानी है उस आवाज की जो कभी क्लासिकल ट्रेनिंग से नहीं निकली, जो रियलिटी शो से फेमस नहीं हुई, पर जो हर दिल का पर्सनल प्लेलिस्ट बन गई। के 23 अगस्त 1968, दिल्ली। एक सिंपल मलयाली फैमिली, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना म्यूजिक इंडस्ट्री का कनेक्शन, बस एक लड़का जिसे बचपन से गाने का शौक था। केके ने स्कूल और कॉलेज के दिनों में दोस्तों के सामने गाना शुरू किया। उनके आइडल्स किशोर कुमार, वो कहते थे मैं किशोर दा को सुन सुन कर ही सीखा हूं। उन्होंने DU के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, पर इंटरेस्टिंग बात यह है उन्होंने कभी म्यूजिक को फॉर्मली सीखा ही नहीं। नो गुरु नो रियाज का ट्रेडिशनल सिस्टम। कॉलेज के बाद म्यूजिक नहीं बल्कि मार्केटिंग जॉब। हाँ, 6 महीने तक वो एक होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। शादी भी जल्दी हो गई उनकी बचपन की दोस्त ज्योति से, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया या तो मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा या रिस्क लूंगा। 1994 वो मुंबई आ गए, सपना सिंगर बनना। पर मुंबई में स्ट्रगल आसान नहीं था। उन्होंने 3500 से ज्यादा जिंगल्स गाए एड्स के लिए, पेप्सी, कोका कोला, सेंट्रो। आवाज पहचान में आने लगी पर चेहरा नहीं। फिर आई एक फिल्म 1996 में माचिस, सॉन्ग छोड़ आए हम वो गलियां, और पहली बार लोगों ने पूछा ये किसकी आवाज है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो प्लेबैक सिंगिंग का डेफिनेशन बदलने वाली थी, और फिर कैसे तड़प तड़प के और एक सितारा जन्मा, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: क्या आपने वो गाना सुना है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। हाँ, और कभी सोचा है कि अगर ये गाना किसी और ने गाया होता तो क्या उतना ही दर्द महसूस होता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सिंगर केके की। 1999 फिल्म आई हम दिल दे चुके सनम, म्यूजिक इस्माइल दरबार का था और गाना तड़प तड़प के। इस गाने ने केके को सिर्फ सिंगर नहीं दर्द की आवाज बना दिया। उनकी आवाज में एक खास बात थी, वो ओवर ड्रामेटिक नहीं होते थे ना अननेसेसरी हरकतें, बस सीधा दिल से। 2000 में उनका एल्बम आया पल और टाइटल ट्रैक आज भी फेयरवेल सॉन्ग का किंग है, पल याद आएंगे पल। याद है वो गाना? केके ने प्रूव कर दिया वो सिर्फ फिल्मों के सिंगर नहीं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी है। उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स दिए, तू ही मेरी शब है, उसके बाद जरा सा खुदा जाने, और रॉक वाइब्स में भी कमाल किया। आंखों में तेरी इज द टाइम टू डिस्को उनकी वर्सेटैलिटी उनका सीक्रेट वेपन थी। इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कभी अननेसेसरी लाइमलाइट नहीं ली, ना कॉन्ट्रोवर्सीज, ना रियलिटी शोज में जज बनना। वो बस गाते रहे और हर जनरेशन का प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गए। और कैसे द मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार बने सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: कार्निवल द लास्ट राइड King.

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनुदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: और कुछ लोगों के दिल में। पॉइंट 6 पर मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा, आप सभी ना के उसी कैटेगरी में आते थे। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली इन सब में गाने गाए। साउथ इंडिया में भी उनका क्रेज उतना ही था। उनकी आवाज का टेक्सचर यूनिक था, ना अरिजीत जैसा सॉफ्ट नेजल, ना सोनू निगम जैसा क्लासिकल कंट्रोल, ना शान जैसा ब्रीजी टोन। फिर भी सबसे अलग उनकी सिंगिंग में एक ऑनेस्टी थी, जैसे वो एक्टिंग नहीं कर रहे हो, सच में फील कर रहे हो। इंडस्ट्री में सब उनकी सिंप्लिसिटी की तारीफ करते थे। कंसर्ट्स में वो हमेशा लाइव गाते थे, ऑटो ट्यून का जमाना था, पर के की आवाज बिना फिल्टर के भी परफेक्ट थी। उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया सर्कस नहीं बनने दिया, फैमिली उनकी प्रायोरिटी थी। उनके दो बच्चे नकुल और तमारा, वो कहते थे मैं सिर्फ गाना चाहता हूँ, फेम के पीछे नहीं भागता, और शायद इसीलिए वो सबके दिल के इतने करीब हो गए। और कैसे 31 मई 2022 की वो रात इतिहास बन गई, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।
1: कान टूटे बंदे रवे मित्रा की।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी जिंदगी अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट बिना वार्निंग के देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर केके की। 31 मई साल 2022 कोलकाता में कॉलेज फेस्ट, केके स्टेज पर थे, एनर्जी फुल, क्राउड पागल हो रहा था। उन्होंने अपने हिट गाने गाए स्वेटिंग हैवीली, पर वो रुके नहीं, फैंस के लिए परफॉर्म करते रहे। कंसर्ट के बाद होटल वापस गए और अचानक तबीयत खराब, हॉस्पिटल ले जाया गया और रात को न्यूज आई केके इज नो मोर, कार्डियक अरेस्ट। पूरा देश शॉक में था, सोशल मीडिया भर गया था, यार ये सच नहीं हो सकता। सब लोग एक ही लाइन शेयर कर रहे थे, हम रहे या ना रहे कल। आयरनी देखिए, वो गाना जो अमर होने की बात करता है वो उनकी पहचान बन गया। और कैसे बने वो लेजेंड करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

जब एक सिंगर हमारे बीच में नहीं रहता तो क्या वो सिंगर सच में चला जाता है जब उसकी आवाज हर जगह बजती हो। आज भी जब कोई फर्स्ट लव फील करता है तो गाना बजता है जरा सा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर केके की। जब भी कोई हार्ट ब्रेक होता है ना तो गाना बजता है तड़प तड़प के। जब फेयरवेल होता है तो सब लोग एक गाना जरूर गाते हैं, पल याद आएंगे ये पल। केके ने हमें सिखाया कि स्टारडम लाउड होने से नहीं रियल होने से मिलता है। उन्होंने कभी खुद को मार्केट नहीं किया, उन्होंने बस म्यूजिक को अपना मीडियम बनाया। उनकी डेथ ने एक बात क्लियर कर दी, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए जो प्यार हो जो पैशन हो उसे डिले मत करो। केके ने रिस्क लिया, मार्केटिंग जॉब छोड़ी, मुंबई आए, 3500 जिंगल्स गाए और फिर हिस्ट्री लिख दी। आज भी जब उनकी आवाज सुनाई देती है लगता है वो कहीं नहीं गए, क्योंकि लेजेंड्स मरते नहीं हैं, वो सिर्फ प्लेलिस्ट बन जाते हैं। तो ये थी केके की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अभी फिलहाल आप सभी के लिए एड शीरन की आवाज में सिमेट्री।

0: जहाँ बाहर की दुनिया भाग रही है, वही घर में चाहिए थोड़ी राहत, थोड़ी स्मार्टनेस। ब्राइट फ्लेम लाया है आपके लिए स्मार्ट चिमनीज, एनर्जी एफिशिएंट गैस स्टोव्स और ऐसे एयर कूलर्स जो सिर्फ ठंडक नहीं सुकून भी दें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, हर अप्लायंस एक एक्सपीरियंस की तरह।
1: ब्राइट फ्लेम, जहां कंफर्ट, स्टाइल और परफॉर्मेंस मिलते हैं एक साथ। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ब्राइट फ्लेम इन इंडिया।
2: सुनो,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
4: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
5: लाइफ ऑन व्हील्स, जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
6: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
7: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
8: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
7: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
9: प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है।
7: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
9: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
7: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
10: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर एक प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के साथ चर्चा करने वाले हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप सभी का ऑर्गन इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। जैसे कि हमने आपको ब्रेक के पहले बताया था कि आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है, जो हमें किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपके साथ ऐसे लोगों की बातचीत करवाते हैं जो कि ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ होते हैं या जिन लोगों ने अपने परिजनों के अंग दान किए हैं। इसी कड़ी में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, आज हम डॉक्टर त्रिपाठी से जानेंगे कि स्वैप ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किन विशेष परिस्थितियों में हम ये इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और किन पेशेंट्स में इनका हम लाभ नहीं ले सकते। तो आइए चलते हैं हम डॉक्टर त्रिपाठी के पास एंड डॉक्टर त्रिपाठी से जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप हमारे श्रोताओं को स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए कि ये किस तरह का ट्रांसप्लांट होता है और इसकी विशेषता क्या होती है।
2: देखिए, स्वैप ट्रांसप्लांट को समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया क्या है। जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट के लिए उसे किसी अपने परिजन की, जिसका उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है और वो मेडिकली फिट है, उसकी किडनी उसके शरीर से लेके मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे कानून के हिसाब से सिर्फ निकट संबंधी ही आपको किडनी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई भी ब्लड ग्रुप मैच डोनर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। या तो आपको बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा या कैडेवर पे। ऐसे लोगों के लिए स्वैप ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी होता है। स्वैप ट्रांसप्लांट क्या है? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ऐसी स्थिति में वो आपको नॉर्मल ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं दे सकता। इसी तरह से एक और परिवार है जिसमें मरीज का ब्लड ग्रुप बी है और उसके डोनर का ए है, वो भी डोनर अपने मरीज को नॉर्मल कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के लिए वो भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपका डोनर जिसका ग्रुप बी है और दूसरे मरीज जिसके मरीज का बी है और डोनर का ए है, अगर आप आपस में अदला बदली, स्वैप को हिंदी में हम अदला बदली बोल सकते हैं, अगर आप इस किडनी को एक्सचेंज कर लें आपस में, तो एक कंपेटिबल ट्रांसप्लांट संभव हो सकता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, आपको महंगे बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको नॉर्मल रेट पे कंपेटिबल ट्रांसप्लांट उपलब्ध होगा। और हमारे कानून के हिसाब से, जो इंडिया का ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट है उसके हिसाब से, ये लीगल है कि इस तरह के एक्सचेंज संभव है, किए जा सकते हैं। तो इसे हम स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि ये ट्रांसप्लांट लीगल है, तो इसमें कुछ विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, थोड़ा सा इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
2: जी बिल्कुल, इसके लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट का, उसमें अलग अलग से स्वैप ट्रांसप्लांट का उसमें नाम है, उसकी जो प्रोसीजर्स हैं वो दी गई हैं। तो जो भी नॉर्मल हम लीगल वर्कअप करते हैं उसमें स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए भी अलग फॉर्मेट होते हैं, उसमें दोनों ही परिवारों की सारी लीगल डिटेल्स लगाई जाती है। तो जैसे हम एक फाइल में एक मरीज और डोनर के पेपर्स लगाते हैं, इस केस में दोनों परिवार आ गए साथ में, तो सबके आपस में रिलेशन, दोनों परिवार के आपस के रिलेशन। और इसमें भी ये जरूरी है कि आपस में कोई पैसे का लेन देन ना हो, ऑर्गन की किसी तरह से खरीद फरोख्त ना हो। तो यहाँ भी आपके अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना कि आप चूंकि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अदला बदली है, तो ये मान के चला जा सकता है कि शायद आपको किसी भी तरह से पैसे के लेन देन की जरूरत ना पड़े। तो इन सब चीज़ों की जो रूटीन जाँचें सामान्य ट्रांसप्लांट में होती है वो इसमें भी होती है। और जो आपकी ऑथराइजेशन कमेटी है वो स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए इन सब चीज़ों को देखती है और उसकी परमिशन के बाद ही हम ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो आपने ये स्वैप ट्रांसप्लांट बताया, तो इसमें आपने बताया कि दोनों मरीज के परिवारजनों से हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ये चीज़ लागू होती है कि जो डोनर है वो पेशेंट का परिवारजन निकट संबंधी ही होना चाहिए, या फिर जो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है हम उन लोगों को भी इसमें, या डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं, हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं?
2: नहीं, यहाँ पर भी निकट संबंधियों का कानून तो वही रहेगा जो सामान्य ट्रांसप्लांट पे है। अगर स्वैप का जो एक ग्रुप है उसमें भी वही सारे कानून लगेंगे जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट पे लगते हैं, कि वो उसका निकट संबंधी होना चाहिए, उसके जो भी जो कागज हैं, जो सरकारी कागज हैं उसकी मैचिंग के वो जरूरी होगा। अगर वो जेनेटिकली रिलेटेड है तो उनके केस में जो HLA टाइपिंग हम करते हैं वो सब की जाती है। अंतर सिर्फ ये है कि मरीज का डोनर के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मरीज का डोनर दूसरे मरीज का परिजन है, तो उनका आपस में संबंध तो नहीं होगा। तो आपको अपना जो डोनर है, जो एक्चुअल डोनर नहीं है, जो एक्सचेंज में जा रहा है, उसके साथ आपके संबंध को स्थापित करना पड़ेगा।
1: अगर वो आपका निकट संबंधी नहीं है तो
2: नहीं है तो ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। तो नहीं केस में आपका संबंधी तो होना चाहिए, दो संबंधियों के बीच में ये एक्सचेंज ना कि अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है, इसे भी हम रिलेटेड भी ट्रांसप्लांट मानेंगे।
1: जो सामान्य ट्रांसप्लांट है उसकी प्रक्रिया में आप दूर के रिश्तेदारों से, अपने दोस्त से या फिर अपने पहचान वालों से एक विशेष प्रक्रिया के तहत अंग ले सकते हैं, जिसमें सरकार की परमिशन की ज़रूरत होती है और सरकार पूरी चीज़ें चेक करके सारी चीज़ें देख के कि कोई मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो वो परमिशन दे सकती हैं। लेकिन इस केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसमें निकट संबंधी ही होने चाहिए।
2: बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट में अगर आपका नियर रिलेटेड ना हो, आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी ये नहीं है, तो ऐसे केस में आप दूर के रिलेटिव जैसे चाचा है, मामा है, इनकी भी किडनी लेते हैं। लेकिन स्वैप ट्रांसप्लांट में सिर्फ रिलेटेड डोनर ही हो सकता है, आप उसी का ही एक्सचेंज दूसरे परिवार से कर सकते हैं।
1: जी सर, हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम थोड़े ही समय में वापस आएंगे और अपनी इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं अपने इस कार्यक्रम को लेके जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर त्रिपाठी से जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं जो कि भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब हमने अभी इस बारे में बातचीत की कि इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा हम इस बारे में बातचीत करते हैं। आप हमें ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि किन मरीजों में स्वैप ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और किन मरीजों को स्वैप ट्रांसप्लांट सजेस्ट नहीं किया जाता, उनको पहले ही मनाही कर दी जाती है कि स्वैप ट्रांसप्लांट इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल नहीं है।
2: देखिए स्वैप ट्रांसप्लांट किन में किया जाता है, सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में, पहले हम देखते हैं कि आपके परिवार में ब्लड ग्रुप मैच डोनर है या नहीं है। तो सपोज किसी की फैमिली में ब्लड ग्रुप मैच लोग मिल रहे हैं, वैसी स्थिति में हम उन्हें स्वैप ट्रांसप्लांट की सलाह भी नहीं देंगे और अलाउ भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास डोनर उपलब्ध है। तो आप जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज आती है कि एक डिफिकल्टी होती है कि सपोज आपका रिसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऐसी स्थिति में उसके घर में अगर डोनर नहीं है तो जो दूसरा परिवार है उसे ओ ग्रुप की किडनी चाहिए और उस दूसरे परिवार के डोनर का अगर ओ ग्रुप है तो वो अपने परिवार को भी किडनी दे सकता है। तो इन ग्रुप्स के ट्रांसप्लांट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इनमें स्वैप में उन्हें डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन लोगों को किडनी कम मिलती है, उसकी एक दूसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके डोनर के साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच तो कर रहा है लेकिन डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी है आपके शरीर में, अर्थात मैचिंग नहीं है उसमें, अगर आपका ट्रांसप्लांट होता है तो शायद आपकी किडनी रिजेक्ट कर जाएगी और डोनर का ब्लड ग्रुप वो है, इसका मतलब है कि वो अपने मरीज को किडनी तो दे सकता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से लेकिन उसमें एंटीबॉडी होने की वजह से वो फिट नहीं है। ऐसी स्थिति में ओ ग्रुप के रेसिपिएंट को भी अपोजिट से किडनी मिल सकती है। तो आमतौर पर जब भी कोई पेशेंट रजिस्ट्री के लिए आता है तो हम ओ ग्रुप का रेसिपिएंट जो होते हैं उनके केस में हम उन्हें बताते हैं कि आपके केस में स्वैप के लिए डिफिकल्टी है, और ऐसे केसेस जब भी आएंगे जो मैंने आपको बताया डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी वाले, तो वैसे केसेस में हम इन डोनर्स को आपस में मिलाते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपने कुछ देर पहले ऐसे ट्रांसप्लांट की बात की थी जिसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, जिसे हम ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, थोड़ा सा हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि ये किस तरह का ट्रांसप्लांट होता है।
2: देखिए सामान्य रूप से जब भी आप रूटीन में सुनते हैं कि किसी को ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी किसको हम बोलते हैं कि ओ ग्रुप किसी को भी दे सकता है, AB ग्रुप का पेशेंट किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए ग्रुप का ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, तो यही चीजें गुर्दा प्रत्यारोपण में भी यही संभावनाएं लागू होती है। तो अगर ऐसा कोई डोनर आपके पास है आप ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रुप ए है और डोनर का बी है ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट संभव नहीं है क्योंकि बी ग्रुप की किडनी आपके शरीर में जाएगी तो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। इन मरीजों में अगर ट्रांसप्लांट होता है तो इसे हम ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ऐसा कैसे संभव है, तो जब किसी डोनर का ब्लड ग्रुप बी है और रेसिपिएंट ए है तो ऐसी स्थिति में रेसिपिएंट में जो बी ग्रुप का एंटीबॉडी है उसको हम कुछ दवाइयों प्लाज्मा फेरेसिस के माध्यम से शरीर से एंटीबॉडीज को हटा देते हैं। तो एक प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो व्हाइट वाला ब्लड है प्लाज्मा है इसी में सारी एंटीबॉडीज होती है, उस एंटीबॉडी को निकाला जाता है। एंटीबॉडी नई ना बने इसके लिए काफ़ी पहले से इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं, कुछ महंगे इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि शरीर में रिबाउंड ना हो, फिर से एंटीबॉडीज ना बने। जब एंटीबॉडी की मात्रा एक खास लिमिट में आ जाती है जैसे 1:8 है 1:4 है ना के काफ़ी कम हो जाए, उसका अपना क्राइटेरिया होता है, हर सेंटर का अपना क्राइटेरिया होता है, उस स्थिति में गुर्दा प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। चूंकि एंटीबॉडीज लेवल कम है तो शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे एक एकोमोडेशन की प्रोसेस होती है कि वो बॉडी उस चीज़ को एकोमोडेट कर जाती है। भविष्य में चूंकि आप ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में हैं, आपने एंटीबॉडीज़ का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बनता, और इन मरीजों में भी ये देखा गया है कि ये ट्रांसप्लांट का सफलता का रेट भी करीब करीब कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के बराबर ही होता है, जिसमें थोड़े से एक्सपेंस आपके ज़्यादा होंगे। जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट 6-8 लाख तक का जा रहा है तो करीब करीब 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, क्योंकि प्लाज्मा फेरेसिस और इन दवाइयों का कॉस्ट होता है। लेकिन अगर इनिशियल फेज अच्छी निकल जाती है, बॉडी एक्सेप्ट करती है, तो लॉन्ग टर्म आउटकम इसमें भी बहुत अच्छा होता है।
1: जैसा कि आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये एक तरह की प्लांट प्रोसेस है, तो इस पूरे प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस में उस एंटीबॉडीज को कम करने में उस लेवल तक आने में कितना समय लगता है मरीजों को?
2: देखिए समय इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स नहीं होता कितना समय लगेगा, कितनी प्लाज्मा लगेगी, ये डिपेंड करता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज लेवल कितने हैं। तो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है और डोनर का बी है तो बी ग्रुप का एंटीबॉडी का लेवल टेस्ट किया जाता है सबसे पहले। तो कई लोगों में ये एंटीबॉडी लेवल बहुत हाई होते हैं, जैसे 500 से ऊपर होते हैं, कई लोगों में 32-64 इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ये एंटीबॉडी टाइटर आते हैं। तो जिन लोगों के एंटीबॉडी टाइटर कम हैं उनमें तीन चार पांच साइकिल्स में कंट्रोल हो जाता है, एक दिन छोड़ के साइकिल की जाती हैं। जिन लोगों में लेवल बहुत ज्यादा है, कई बार उनमें दो हफ्ते तीन हफ्ते तक भी लग जाते हैं एंटीबॉडीज को निकालने में, तो ये समय आपके एंटीबॉडी लेवल पर डिपेंड करता है। दूसरा, आजकल कुछ नई चीजें मार्केट में है, जैसे ग्लाइकोजॉक कॉलम्स होते हैं, तो कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनको प्लाज्माफेरेसिस के साथ हम जोड़ देते हैं, तो एक सिंगल लंबी साइकिल में हम एक से दो दिन में ही सारी एंटीबॉडीज को हटा देते हैं। और हम अपने सेंटर्स में जो एबीएन कंपेटिबल ट्रांसप्लांट आजकल कर रहे हैं, हम कई सभी ट्रांसप्लांट ग्लाइकोजॉक कॉलम्स के साथ कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल ट्रांसप्लांट के कंपेयर में सिर्फ दो से तीन दिन एक्स्ट्रा हमें चाहिए होते हैं और हम एंटीबॉडी पूरी तरह से निकाल के टारगेट लेवल पे आते हैं, और मरीज को इस ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में भी कुल 8 से 10 दिन ही लगते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस प्रोसेस के बाद जो शरीर में जो हमने चेंजेस किए, प्लाज्मा निकाल लिया, जो एंटीबॉडीज हैं उनको कम कर दिया, तो ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद वो क्या अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है या ये परमानेंट चेंजेस होते हैं जो उसकी बॉडी में होते हैं?
2: नहीं, सबसे पहले तो क्लियर करूँ कि ये प्रोसेस रिसिपिएंट में होती है। हमें रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज को हटाना है। डोनर की किडनी रिसिपिएंट के शरीर में जानी है, तो डोनर की किडनी रिजेक्ट ना हो इसलिए रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज हमें हटानी है। तो रिसिपिएंट की मैंने आपको बताया एंटीबॉडीज हमने हटा दी, किडनी को हमने लगा दिया, क्योंकि अब आप रूटीन इम्यूनो सप्रेशन में है। अब हमने ऐसी दवाइयां दी है कि शरीर का जो एंटीबॉडीज जनरेशन कैपेसिटी है वो हमने काफ़ी कम कर दी है, तो भविष्य में ये एंटीबॉडी का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाता। पहले हमने देखा है, पहले दो हफ्ते तीन हफ्ते तक हम भी लेवल्स को टेस्ट करते हैं कि सडन बढ़ ना जाए, और कई बार ट्रांसप्लांट के बाद हमें फिर से प्लाज्मा करनी पड़ती है पहले हफ्ते में, लेकिन समय के साथ साथ ये एंटीबॉडी जनरेशन बहुत कम हो जाता है और दो तीन हफ्ते बाद आप मान सकते हैं करीब करीब एबीओ एंटीबॉडीज बहुत हाई लेवल आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है।
1: और डोनर से इसका कोई संबंध नहीं है?
2: डोनर तो बिल्कुल सामान्य मरीज की तरह है। जो सामान्य मरीज का डोनर है उसकी तो किडनी वैसे निकाली गई है, जो भी परिवर्तन है वो रिसिपिएंट के शरीर में है।
1: सर, किन मरीजों में एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट की मनाही होती है?
2: देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जो भी सामान्य गुर्दा प्रत्यारोपण की कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, जैसे एक्टिव इन्फेक्शन हैं, किसी को कैंसर है जो कि क्योरेबल नहीं है या क्योर भी रिसेंटली हुआ है, उसके लिए अपनी अपनी हर कैंसर की अपने टाइम पीरियड होता है, किसी पेशेंट को एडवांस कार्डियक डिसीज है जिससे उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद, तो ऐसे लोगों में ट्रांसप्लांट की मनाही है। मेडिकल रीजन से तो अगर किसी के पास भी डोनर उपलब्ध नहीं है कंपेटिबल, और उसके पास इनकम्पेटिबल डोनर उपलब्ध है जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं है, तो ये भी इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट में जा सकता है।
1: सर, हम यहाँ पर फिर से एक छोटा से अंतराल के बाद वापस आएंगे और अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: ही अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के

0: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार, आज के जमाने के लिए यादगार।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाँ।
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल,
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।
0: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी रातें।

मिलके एक दिया जलाई। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान।

0: का जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: दोस्तों हम अपनी इस चर्चा को जारी करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट के बारे में। सर, स्वैप ट्रांसप्लांट और एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट दोनों के लिए कोई नेशनल रजिस्ट्री या स्टेट लेवल रजिस्ट्री मौजूद है?
3: देखिए बिल्कुल, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पहले से काम कर रही हैं। जैसे महाराष्ट्र में स्वैप की रजिस्ट्री है, मेरे हिसाब से 3 रजिस्ट्रीज हैं वहाँ पे। इस तरह से कुछ ऐप बने हुए हैं जिसमें देश के कहीं से किसी कोने से भी कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट अपने मरीज को ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्टर करा सकता है, और उसके लिए डोनर जहाँ भी उपलब्ध हो। जैसे मैं भोपाल में हूँ, मेरी अपनी स्वैप रजिस्ट्री है, लेकिन चूँकि मैं सिंगल सेंटर है, मेरे पास रजिस्ट्री छोटी है। मेरे अपने जितने पेशेंट्स हैं, कई बार हमें उसके कंपेटिबल डोनर के लिए दूसरा स्वैप ढूंढना पड़ता है। कई बार सालों हम वेट करते हैं कि इस मरीज के लिए डोनर कब मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस तरह की रजिस्ट्री जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन है, वहाँ पे हमारे पेशेंट्स को स्वैप उसका कंपेटिबल स्वैप मिलना बहुत आसान है, शायद तुरंत मिल सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इस तरह की रजिस्ट्री है। साउथ में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ बहुत एक्टिवली इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है, और यही वजह है कि आजकल ट्रांसप्लांट्स के नंबर हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, स्वैप के नंबर बढ़ रहे हैं, एवियन कंपेटिबल बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से अपना काम बढ़ा रहे हैं।
2: जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है कि हम आप मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले में भोपाल शहर में ये प्रैक्टिस करते हैं नेफ्रोलॉजी की, तो अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में उपलक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में स्वैप ट्रांसप्लांट या एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट कहाँ कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? और
3: देखिए मध्य प्रदेश में भी स्वैप और एबीओ इनकम्पेटेबल दोनों ही ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पिछले वर्ष 2019 में हमने ही एबीओ इनकम्पेटेबल और स्वैप दोनों ही ट्रांसप्लांट भोपाल शहर में स्टार्ट किया था। एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट इसके पहले भी इंदौर में कुछ हुए हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा। पिछले साल हमारे यहाँ एक मरीज था जिसमें एक हिंदू फैमिली थी जिसकी वाइफ के साथ उसकी मैचिंग नहीं थी, और दूसरा एक मुस्लिम फैमिली थी जो कि उत्तर प्रदेश से थी। तो इस तरह से दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग रिलीजन के लोग हमें मिले, और हमने उसकी शुरुआत की स्वैप की एमपी में, उनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया। उसके 3 से 4 महीने के बाद एक और इसी तरह से दो फैमिलीज के बीच में हमने स्वैप ट्रांसप्लांट किया। तो कुल 4 रेसिपिएंट्स हमारे स्वैप ट्रांसप्लांट से अब तक फ़ायदा ले चुके हैं यहाँ पर। एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी पिछले 6 महीने में हमने 4 एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ग्लाइकोजॉब कॉलम्स से होता है, जिसमें कि 1 से 2 दिन में ही हम एंटीबॉडीज़ को रिमूव करते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। तो इस तरीके से 4 एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भोपाल शहर में हमने पिछले 6 महीने में किए हैं।
2: जी, सो इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा, अगर हम खर्चे की बात करें तो लगभग कितना खर्चा?
3: मैं अपने सेंटर का खर्चा बताऊं तो जो नॉर्मल कंपेटिबल ट्रांसप्लांट है, ब्लड ग्रुप मैचिंग, उसका एक्सपेंस सब कुछ मिला के करीब करीब 6 से 7 लाख तक आता है। अगर हम एबीओ इनकम्पेटिबल की बात करें तो ये खर्चा 10 से 12 लाख के बीच, वो एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर कम है तो शायद 10 से 11 लाख, या 1-2 लाख और एक्स्ट्रा अगर टाइटर ज़्यादा है। तो स्वैप ट्रांसप्लांट का एक्सपेंस में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जब हमने उसकी डिटेल अभी समझी है कि वो ट्रांसप्लांट पूरी तरह से कंपेटिबल ट्रांसप्लांट जैसा ही है। सिर्फ इसमें डोनर मेडिकली आपस में रिलेटेड नहीं है, दो अलग अलग परिवारों में एक्सचेंज हुआ है, तो उसका खर्चा भी आप करीब करीब 6 से 7 लाख के बीच माने।
2: जी दोस्तों, अब मैं डॉक्टर त्रिपाठी से अपील करूंगा कि वो हमारे श्रोताओं के लिए अगर कोई अपील करना चाहें तो।
3: देखिए, मैं जो किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखें। अगर आपकी किडनी ख़राब है, आपकी किडनी पूरी तरह से डैमेज है, आपको डायलिसिस लग रहा है, यहाँ से ज़िंदगी का अंत नहीं है। किसी भी गुर्दा फेलियर के मरीज में एक सही ट्रीटमेंट जो आपको एक लंबी ज़िंदगी दे सकता है, आपको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, या जैसे आप पहले थे, आप सब कुछ खा सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आपको रूटीन बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है, आपको एक नई ज़िंदगी देने जैसा है। तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनसे ट्रांसप्लांट के बारे में सलाह लें। अगर आपके पास डोनर नहीं है तो ये जिनकी हमने बातें की, स्वैप ट्रांसप्लांट, ईवीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट, इन सब की सुविधाएं आजकल ज़्यादातर सेंटर्स में उपलब्ध हैं, तो इन सब के बारे में खुल के अपने डॉक्टर से बात करें, और जो भी संभव हो पाए आप कोशिश करें कि ट्रांसप्लांट पे जाएं। डायलिसिस पे बहुत लंबा समय निकालना, बहुत कम संभावनाएँ होती हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ट्रांसप्लांट की तुलना में बहुत ख़राब।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए और हमसे इतनी बातचीत की और इतनी सही जानकारी हमें उपलब्ध करवाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अगर आप भी अंगदान के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, हमें ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम जल्दी ही वापस आएंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से आपको स्वाब ट्रांसप्लांट के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली होगी और इन प्रयासों से बहुत से मरीजों तथा उनके परिवारों को फायदा होगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत ही सरल भाषा में हमें एक बहुत ही जटिल इलाज के बारे में समझाया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताइए और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

गाना है फ्रॉम द मूवी MS धोनी और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ की दिशा ही बदल दी। और सक्सेस कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऑफन साइलेंट होती है, लोनली होती है और कई बार इनविजिबल होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं बल्कि हिम्मत, पेशेंस और रिस्क के पन्नों में लिखी जाती है। आज की स्टोरी कोई स्टार्टअप फंडिंग वाली फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट वायरल सक्सेस। ये कहानी है पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन की और उस कॉन्फिडेंस की जो भीड़ में ऑपोजिट जाकर डिसीजन लेने की हिम्मत देता है। इमेजिन करो एक छोटा सा सिंगल रूम अपार्टमेंट जहाँ स्पेस कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जहाँ लग्जरी नहीं थी लेकिन सीख बहुत थी, और जहाँ किसी ने ये डिसाइड किया कि जिंदगी सरकमस्टांसेस से नहीं डिसीजन से बनती है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की लेकिन मार्केट को ऐसे पढ़ा जैसे कोई किताब पढ़ता है, जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और आज वही इंसान ग्लोबल रिच लिस्ट में जगह बना चुका है। बिलियंस की नेटवर्थ, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स और एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की शॉपिंग हैबिट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि शुरुआत बिजनेस से नहीं हुई थी, शुरुआत लॉस से हुई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी घाटे में था। उस मोमेंट पे दो रास्ते थे, एक सेफ जॉब या अनसर्टेनिटी भरा रिस्क, और इन्होंने चुना बिल्कुल सही रिस्क। लेकिन रिस्क भी ऐसा जो समझ से लिया गया था, ना कि एक्साइटमेंट से। इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों की साइकोलॉजी को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस सीखी। आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने इयर्स तक क्वाइटली ग्राउंड वर्क किया। नो हाइप, नो मीडिया इंटरव्यूज, नो फ्लैशी लाइफस्टाइल, बस ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी और साइलेंट एग्जीक्यूशन। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा था, ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा था और यही डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि कभी कभी सक्सेस भीड़ के साथ चलने में नहीं बल्कि भीड़ को समझने में होती है। तो आज हम सक्सेस को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कैसे लॉस अपॉर्चुनिटी बना, कैसे पेशेंस प्रॉफिट में बदला और कैसे एक सिंपल साइकोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता है। मीडिया से दूरी, सिंपल वाइट क्लॉथ्स और लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल। लोग उन्हें एक निकनेम से भी जानते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन वो निकनेम क्या है और आखिर वो इंसान है कौन, ये मैं बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जियो।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आज मैं बात करने वाली हूँ एक साइलेंट बिलियनियर के बारे में जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नाम है राधा किशन दमानी। जी हाँ, वही विजनरी माइंड जिन्होंने बनाया डीमार्ट। आज दुनिया इन्हें रिटेल किंग के नाम से जानती है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है, लेकिन जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ 5,000 रुपए से। स्टॉक मार्केट से शुरुआत, फादर के गुजरने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर एक ऐसा डिसीजन जिसने इन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दी। जब पूरा मार्केट तेजी पर भरोसा कर रहा था तब इन्होंने गिरावट पर दाव लगाया और यही स्ट्रेटेजी खासकर हर्षद मेहता दौर में इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन दमानी सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे। इन्होंने समझा भारत की असली ताकत लग्जरी नहीं बल्कि वैल्यू शॉपिंग है और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक ऐसे रिटेल मॉडल को जो प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट बनाता है। लेकिन सवाल अब ये है, सिंगल रूम से रिटेल एम्पायर तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, इनका बचपन कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और कॉलेज ड्रॉप होने के बाद इन्होंने खुद को कैसे रीबिल्ड किया, ये सब बताऊंगी। लेकिन लगान फिल्म का गाना आ रहा है, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत किसी ऑफिस केबिन से नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे से होती है बॉस। राधा किशन दमानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। साल 1954, राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में जन्म और बाद में परिवार का शिफ्ट होना सपनों के शहर मुंबई में। लेकिन मुंबई की चमक हर किसी को लग्जरी नहीं देती। फैमिली

सर शेयर ब्रोकर थे और बचपन से ही नंबर शुरू की मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन फियर नहीं था, ये क्लैरिटी थी, क्योंकि कई बार डिग्री से ज्यादा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। लाइफ स्मूथली चल रही थी, लेकिन 1985 से 1986 में इनके फादर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो गुजर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनसर्टेनिटी और इमोशनल प्रेशर सब एक साथ आ गया था। फैमिली का बॉल बियरिंग बिजनेस पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था और उस टाइम इन्होंने एक टफ डिसीजन लिया बिजनेस को बंद करने का। सोचिए, एक यंग लड़का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सामने कोई क्लियर रोड मैप नहीं। लेकिन यहीं से इनकी रियल लर्निंग शुरू हुई। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को सीरियसली समझना शुरू कर दिया। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई बिग कैपिटल नहीं, बस 5,000 रुपए और सीखने की भूख। वो मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं, मार्केट को समझने आए थे। उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, फियर और ग्रीड को समझा और पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। 1990 का दशक इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ड्रामेटिक फेज, जहां एक्साइटमेंट भी थी और अनसर्टेनिटी भी। और इसी फेज में दमानी ने वो किया जो बिगनर्स रेयरली करते हैं। इन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया, बल्कि भीड़ को पढ़ा और यहीं से उनकी आइडेंटिटी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में बनने लगी। लेकिन इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर बनने तक का डायरेक्शन कैसा था, वो अचानक नहीं था। उसके पीछे था इयर्स का ऑब्जर्वेशन और एक सिंपल रियलाइजेशन, भारत का कंज्यूमर लग्जरी नहीं, वैल्यू चाहता है। और इसी रियलाइजेशन ने फ्यूचर में एक रिटेल रेवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन वो रियलाइजेशन बिजनेस में कैसे बदला, पहला स्टोर खोलने का डिसीजन कैसे आया और एक इन्वेस्टर अचानक रिटेलर क्यों बना, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं।

0: फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। इन्वेस्टर बनना एक जर्नी थी लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना एक रिस्क। राधा किशन दवानी के बारे में बात चल रही है आज बिजनेस अनप्लग्ड में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से अपनी पहचान बना ली। प्रॉफिट भी था, रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऑब्जर्वर अभी भी एक्टिव था। वो लगातार एक चीज नोटिस कर रहे थे, इंडिया का मिडिल क्लास शॉपर, शॉपिंग उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बजट इम्पोर्टेंट होता है और ट्रस्ट उससे भी कहीं ज्यादा। मार्केट में ऑप्शंस तो थे लेकिन अफोर्डेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का गैप भी था। और यहीं से एक थॉट आया, क्या रिटेल को सिंपलर, चीपर और मोर रिलायबल बनाया जा सकता है। ये थॉट सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप नंबर से खेलते हो, रिटेल में हैबिट से। साल 2002 मुंबई के पवई में एक क्वाइट शुरुआत हुई, पहला डी मार्ट स्टोर खुला। नो हाइप, नो ग्रैंड लॉन्च, बस एक क्लियर साइकोलॉजी, कम मार्जिन ज्यादा वैल्यू और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट।

से दूर रहते थे, लेकिन टीम के लिए उनकी क्लैरिटी बहुत विजिबल थी। नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो प्रेशर ग्रोथ, बस सस्टेनेबल स्केलिंग। धीरे धीरे स्टोर्स बढ़ने लगे, कस्टमर लॉयल होने लगे और ब्रांड साइलेंटली हाउसहोल्ड नेम बनता गया। लेकिन हर ग्रोथ फेज के साथ प्रेशर भी आता है, एक्सपेंशन का प्रेशर, कॉम्पिटिशन का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। अब सवाल ये था, क्या ये स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटेजी फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट में टिक पाएगी? क्या साइलेंट ग्रोथ एक दिन एक्सप्लोसिव सक्सेस में बदलेगी या कंपटीशन इसे पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और कभी कभी सक्सेस शोर नहीं करती बल्कि स्टेडली बढ़ती रहती है। डीमार्ट के साथ भी यही हुआ, कोई ओवरनाइट एक्सप्लोजन नहीं लेकिन कंसिस्टेंट एक्सपेंशन। 2011 से 2012 के करीब 55 स्टोर्स और फिर 60, 75, 100 और देखते ही देखते सैकड़ों स्टोर्स का नेटवर्क। आज मल्टीपल स्टेट में प्रेजेंस और करोड़ों कस्टमर्स की डेली शॉपिंग हैबिट का हिस्सा। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये ट्रस्ट की ग्रोथ थी। फाइनेंशियल्स भी इसी कहानी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेवेन्यू हर साल स्टेडली बढ़ता गया, प्रॉफिट इम्प्रूव होता गया और मार्केट कैप कई गुना बढ़ गया। 2017 में पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का IPO आया और लिस्टिंग के साथ ही मार्केट ने क्लियर मैसेज दे दिया, साइलेंट एग्जीक्यूशन भी ब्लॉकबस्टर हो सकता है। नेटवर्थ के मामले में राधा किशन दमानी ग्लोबल रिच लिस्ट में नाम बना चुके थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, उनकी सिंप्लिसिटी वही रही। व्हाइट क्लॉथ्स, लो प्रॉफिट लाइफ, मीडिया से दूर, शायद इसीलिए इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट भी कहा जाता है। लेकिन इस एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। कम मार्जिन, फास्ट पेमेंट साइकिल, ओन स्टोर्स, कंट्रोल एक्सपेंशन और यही स्ट्रेटजी इन्हें कंपटीशन से अलग बनाती है। क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नंबर नहीं बल्कि लेसन होता है। राधा किशन दमानी की कहानी हमें बताती है, आपको फ्लैशी होने की जरूरत नहीं, आपको फास्टेस्ट होने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको पेशेंट और ऑब्जर्वेंट जरूर होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, क्लैरिटी होती है। उन्होंने मार्केट को समझा, कंज्यूमर को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझा। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तो शायद ये मैसेज आपके लिए है। स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म। फॉलो ट्रेंड्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग फॉलो करो और ग्रोथ के पीछे भागने से पहले ट्रस्ट को बिल्ड करो। फेलियर्स आएंगे, कंफ्यूजन होगा, कंपैरिजन भी होगा, लेकिन याद रखना हर सक्सेसफुल ब्रांड कभी अननोन ही था और शायद आज आप भी उसी अननोन फेज में हो जहां पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो टेक योर टाइम, ऑब्जर्व मोर, पैनिक लेस और कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। इसी के साथ ये था आज का एपिसोड बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहाँ सक्सेस सिर्फ दिखाई नहीं देगी बल्कि समझ भी आएगी। टिल देन ड्रीम बिग, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप बिल्डिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
1: ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मनु दास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स लव।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। टू 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वजह।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है, क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
2: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

कभी सोचा है प्लेट भी जिंदा हो सकती है? कभी महसूस किया है कि जब गर्म चावल किसी हरे पत्ते को छूते हैं तो सिर्फ भाप नहीं उड़ती, एक पुरानी याद उड़ती है शहर के स्टील और सेरेमिक के बीच। कहीं खो गया है वो हरा रंग जो कभी हर शादी, हर भोज, हर उत्सव का सेंटर हुआ करता था। वो कहा है कि चांदी के बर्तन चमक सकते हैं, पर मिट्टी और पत्ता महका करते हैं। कुछ चीजें दिखती कम है पर महसूस ज्यादा होती हैं। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर गरबा, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसे थाल की जो फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक पेड़ पर उगा। अब बात कर रहे हैं बनाना लीफ की, तो चलिए आइए जानते हैं परंपरा का गहरा इतिहास क्या कहता है। भारत में प्रकृति कभी सिर्फ रिसोर्सेस नहीं रही, वो रिश्ता रही है। फिर बात करें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, केले के पत्ते पर भोजन सिर्फ एक कस्टम नहीं, एक मर्यादा है। पुराने दौर में हर घर के पास बर्तन नहीं होते थे, मेटल काफी महंगा था, पर पेड़ वो सबका था। और रही बात केले की पेड़ की, तो केले का पेड़ शुभ माना गया। विवाह और पूजा में इसके पत्ते और तना दोनों का उपयोग होता था, इसलिए जब भोजन पत्ते पर आने लगा तो उसमें पवित्रता का एक भाव जोड़ दिया गया। वो कहा है कि जिस पेड़ ने सांस दी उसी ने थाल दिया। इंसान और प्रकृति का ये सबसे पुराना सौदा था। केले का पत्ता सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक साइंस भी अपने साथ लाता है। इस साइंस के बारे में बात करेंगे वापस आकर, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस, साइंस जो स्वाद बदल देती है। बनाना लीफ के सरफेस पर एक नेचुरल वैक्स कोटिंग होती है। जब गर्मा गर्म खाना जैसे सांबर, चावल या घी बनाना लीफ पर डाला जाता है तो पत्ते की सरफेस हल्का सा रिएक्ट करता है और बस इसी रिएक्शन से एक सटल अर्थी अरोमा रिलीज होता है, इसलिए बनाना लीफ पर खाने का टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, जरा सा फ्रेश, जरा सा वॉर्म। और बात करें हाइजीन की तो बनाना लीव्स में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सिंगल यूज, बायोडिग्रेडेबल, जीरो डिटर्जेंट और साथ ही जीरो रेसिड्यू होती है। और बस इसीलिए आज दुनिया में इको फ्रेंडली का टैग लगाकर बेचा जा रहा है इन्हें। जबकि अगर बात की जाए हमारे पुरखों की तो बिना टैग के जी रहे थे बनाना लीव्स के साथ। जब साइंस परंपरा के साथ खड़ी हो जाए तो रिवाज अंधविश्वास नहीं रहता, विजडम बन जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ जानते हैं सर्विंग की ज्योमेट्री। अगर आप कभी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फेस्ट में बैठे हैं तो आपने नोटिस किया होगा हर आइटम की जगह फिक्स्ड होती है। जैसे बात करें मीठा, तो मीठा सबसे पहले दिया जाता है, नमक ऊपर लेफ्ट साइड रखा जाता है, पीकल साइड में रखा जाता है और राइस हमेशा सेंटर में। ये कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं है बल्कि ये एक डाइजेशन पैटर्न और प्रैक्टिकल सर्विंग लॉजिक का एक प्लान है। और बस इतना ही नहीं, पत्ता किस डायरेक्शन में रखा जाएगा वो भी एक ओकेजन बताता है। खाने की प्लेट भी एक लैंग्वेज बोलती है, बस हम सुनते रहे। वो कहा है कि हर दाने की जगह तय होती है, हर स्वाद का अपना मकाम होता है। जिंदगी भी तभी बैलेंस्ड लगती है जब हर रिश्ता सही जगह होता है। बनाना लीफ से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो चलिए जानते हैं ओनम सद्या पत्ते पर जो त्योहार मनाया जाता है। ओनम के दौरान जो सद्या सर्व होता है वो बनाना लीफ पर ही परोसा जाता है। 20 से 26 आइटम्स तक अवियल, ओलन, तोरण, पायसम, रंग, टेक्सचर, टेम्परेचर सब एक पत्ते पर नजर आता है। सोचिए एक लीफ पर पूरा फेस्टिवल। ये सिर्फ खाना नहीं, कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। और इतना ही नहीं, शादी, सम्मान और समानता। माना जाता है बनाना लीफ पर खाना खाना एक इक्वालिटी सिंबल रहा है। सब लोग एक ही लाइन में बैठकर खाते हैं, सेम पत्ता सेम सर्विंग, ना वीआईपी प्लेट ना स्पेशल बॉल, एक पत्ता सबके लिए। इसमें एक साइलेंट डेमोक्रेसी देखी जाती है। वो कहा है कि जब पत्ता सबका एक सा हो तो फर्क सिर्फ पेट का रहता है, स्टेटस का नहीं। बनाना लीफ ने हर घर में कैसे अपनी जगह बनाई, परंपरा से लेकर साइंस तक सब कुछ अपने साथ समेटे रखा। अब वापस आकर जानेंगे कि आज के जमाने में कितनी अहमियत है इस लीफ की। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो आज का जमाना और कल की सीख का एक परफेक्ट कॉम्बो है। आज वेडिंग्स में फैंसी क्रॉकरी है, थीम डेकोर है, इम्पोर्टेड कटलरी है, पर जब बनाना लीफ आता है तो लोग फोटो लेते हैं क्योंकि उन्हें फील आता है वो उनके बचपन, दादी का घर या किसी टेंपल फेस्ट से जुड़ा हुआ है। कभी कभी सिंप्लिसिटी ही लग्जरी होती है। और बात कर ही रहे हैं बनाना लीफ की, वो कहा है कि थाल बदलते गए जमाना बदलता गया, पर जो पेड़ से जुड़ा रहा वो कभी अकेला नहीं रहा। अगली बार अगर मौका मिले तो स्टील की प्लेट साइड रख देना और एक पत्ता बिछा कर देखना, हो सकता है खाना वही हो पर एहसास बदल जाए। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: हेलो हाय यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 9.6 एफएम कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ इश्क शायराना। और आज इश्क शायराना में हम फिर से एक सफर पर निकलने वाले हैं। सफर है शब्दों का, सफर है शायरी का और उन लोगों का जो लफ्जों के साथ जीते हैं। और आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि पांच पांच कवित्री मौजूद है मेरे स्टूडियो में, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए आपको मिलवाती हूँ, और मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको प्रेरणा सिंह, प्रेरणा जी से। तो कैसे हैं आप?
1: मौसम भी खुशनुमा है और मन भी खुशनुमा में रेडियो महारानी में आके
0: जी। और पूजा भारद्वाज जी, सुमन जो नाम है वो ये ही बताएंगी कि क्यों इन्होंने रखा है। कैसे हैं मैम आप?
2: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, और महारानी में आ जाने का हमारा सौभाग्य हुआ है। और सुमन नाम यानी फूल, यानी कि खिले खिले जैसे चेहरे हैं
0: जी,
2: और जो हम पसंद करते हैं हमें से खिला रहना।
0: क्या बात है। मेरे साथ दीपिका वल्दिया जी हैं, जिनका पूरा नाम है दीपिका वल्दिया दीप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
1: बहुत शुक्रिया हमें अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए
0: जी। रजनी बाला जी हैं, रजनी बाला सहज मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ आमंत्रित किया हम सबको, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है
0: जी। कृष्णा शर्मा दामिनी जी मेरे साथ हैं, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है रेडियो में आके?
4: महारानी अपने नाम में ही एक ऐसा नाम है जहाँ जिसने भी पढ़ा है वो अपने आप में एक खास महसूस करता है।
0: क्या बात है। तो सबका स्वागत तो मैंने करा दिया है, लेकिन सबसे पहले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये मेरा आप सभी से ही है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट रहा जहाँ आपको महसूस हुआ कि आपको साहित्य की तरफ बढ़ना चाहिए? आपको कविताओं ने चुना या आपने कविताओं को चुना, ये मेरा सवाल है आप सभी से। तो मैं सबसे पहले कृष्णा शर्मा जी से जानना चाहूंगी कि आपने कब चुना कविताओं को?
4: कविता एक्चुअली में कविता एक प्रमाणिक ऐसी विधा नहीं है कि जिसको टेक्निकल चीज से सीखा जाए। जब माँ की कोख में होते हैं तो माँ गुनगुनाती है, वो आवाज बच्चों के कानों तक पहुँचती है
0: जी।
4: एक हल जोतता है, हल जोतने वाला, वो भी गुनगुनाता रहता है, पर उसे ये नहीं पता कि मैं क्या गुनगुना रहा हूँ। माँ लोरी सुनाती है, थपकी देती है, उसकी थपकी में भी वही कविता है
0: जी।
4: बारिश होती है, बारिश की बूंदों में भी वही कविता है। तो कविता के विचार बारे में दो मतभेद हैं कि एक कविता का विधान है जो तरीके से सीखा जाता है जब उसमें आगे बढ़ते हैं, और एक साहित्य वो है, एक अदब वो है जो आपके अंदर स्वतः ही उसके अंदर आप पैदा होते हैं
0: जी।
4: अगर कोई सुन रहा है गीत, गजल, कविता, जैसे कि महारानी या रेडियो कोई सुन रहा है
0: जी,
4: तो इसका मतलब है उसके अंदर भी साहित्य है कहीं ना कहीं जो आपको सुन रहा है
0: जी।
4: बात यह अलग है कि वो जन्म देर से ले पाता है और अपने आप को पहचान बड़ी मुश्किल से कर सकता है कि मैं भी साहित्य के क्षेत्र में कदम रख सकता हूँ। वहाँ उसको जन्म लेना पड़ता है, वहाँ उसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है
0: जी।
4: वैसे हर इंसान के अंदर एक कवि है, एक साहित्य छुपा होता है। साहित्य ऐसे समझ लीजिए ऑक्सीजन, ये हर इंसान के लिए ऑक्सीजन है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको तब तक अपनी बात कहनी नहीं आएगी जब तक आपने कोई अच्छा लिटरेचर, अच्छा साहित्य ना पढ़ा।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मेरे सवाल का आपने जवाब दिया है। तो एक और सवाल भी आपसे पूछ लेती हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। एक महिला होकर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है बहुत सारी चीजों को चुनना, है ना, कि आप अपने एक प्रोफेशन में भी हैं, आप उस पर भी ध्यान देते हैं, आपका एक पैशन भी है जैसे साहित्य, और साथ ही साथ आप अपने घर को भी संभालते हैं, तो कितना मुश्किल होता है?
4: कुछ भी मुश्किल होता
0: है, मुश्किल नहीं है।
4: एक नया दर्द चरागों को हवा देता है, एक नया दर्द चरागों को हवा देता है, जितना करती हूँ वो उतना जगा देता
0: है। हाँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
4: ये जो काम हमारे, हम मॉर्निंग में उठते हैं, रात तक उठते हैं, हम इतनी रिलैक्स औरते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है जीवन जीने की। अच्छा। हमें पता है कि हमें सारी जिम्मेदारियां हमें उठानी है, और हमें अपने लिए भी वक्त निकालना है। हम 10 बार दिन में मरती हैं तो 20 बार जिंदा भी होती है।
0: क्या बात है।
4: तो यही हमारी पहचान है, क्योंकि स्त्री अपने आप में एक पूरी संस्था चलाती है। वो स्त्री, उसको आप वो नहीं कहेंगे कि वो काम पे जा रही है, वो जॉब कर रही है, वो इसलिए नहीं है कि उसके अंदर इच्छा है, वो है, वो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती है। आपने इसकी जिम्मेदारी हर आदमी के रहने वाले, घर में रहने वाले मुखिया को लेनी पड़ेगी। आखिर वो औरत घर से बाहर गई है तो वो क्यों गई है, उसमें आपने उसको ऐसा क्या महसूस कराया कि वो अपनी पहचान और अपना दम भरने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बाहर निकली है। तो उसका रुतबा कहीं कम ना हो, कहीं कम ना आंका जाए, इसलिए वो उसने ये साबित करके दिखा दिया आज के वक्त में, आज के हालात में जहाँ चारों तरफ स्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई हैं, आज के दौर में नारी ने जो अपनी पहचान काबिले तारीफ है वहाँ तक वो जो पहुँची है, सिर्फ अपने मेहनत से पहुँची है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में साहित्य का जरूर होता है, साहित्य का जरूर योगदान।

0: रजनी मैम, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि कब चुना आपने साहित्य को?
1: हिंदी साहित्य मेरी रगों में बसा है, क्योंकि मेरी जो माँ थी तो वो रामायण और गीता कंठस्थ उनको याद थी, और बचपन से हमें खूब चौपाइयाँ छंद ये सब हमें सुनाया करती थी
0: जी।
1: तो वो हमें इतना अच्छा लगता था, फिर उसके बाद जब हम पढ़े और हिंदी सब्जेक्ट हमने पढ़ा, वैसे मैंने एम ए इंग्लिश किया था
0: जी,
1: लेकिन रिक्वायरमेंट हिंदी के टीचर की थी तो मैंने हिंदी को अपना लिया। फिर मैं हिंदी की टीचर हो गई, हिंदी बीए तक मैंने पढ़ा था
0: जी,
1: और मेरे पापा भी संगीत के बहुत बड़े टीचर रहे हैं
0: जी,
1: और सब संगीत रगों में बसा था। फिर कविताओं के जरिए हम यहाँ साहित्य तक आ गए, और साहित्य में अब ये है कि कवि सम्मेलन वगैरह में हम जाते, कवि गोष्ठी में, तो वहाँ पर हम सुनते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मैं कहने से ज्यादा श्रोता बहुत अच्छी हूँ।
0: क्या बात,
1: मुझे साहित्य को सुनना बहुत पसंद है।
0: मुझे अभी लग ही रहा था जैसे आप मैम को सुन रहे थे।
1: हाँ, मैं सुनती हूँ, मतलब मुझे सुनने का इतना शौक है कि अब जैसे कि मैंने सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुकी हूँ, बच्चे मेरे सब शादीशुदा हैं, तो मैं अपना समय ज्यादा से ज्यादा हिंदी साहित्य में सुनने में और कहने में मैं अपना समय बिताना चाहती हूँ
0: जी।
1: ये मेरा एक मतलब आप समझ लो कि मतलब मेरा एक मन भावन
0: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। एक और सवाल है आपसे, कौन इंस्पिरेशन रहा लाइफ में आपकी?
1: मेरी माँ
0: जी,
1: मेरे पापा
0: जी,
1: मेरा बड़ा भाई, वो हिंदी हिंदुस्तान अखबार में संपादक थे सब प्रदीप संगम के नाम से, और उन्होंने बहुत प्रेरणा दी लिखने की, छोटे छोटे लेख लिखा करती थी
0: जी,
1: तो बड़ी खुशी होती थी, कभी 15-20 रुपए उस समय में लेख लिखने के मिलते थे।
0: हाँ जी,
1: तो फिर स्कूल में पढ़ाने लगी तो बच्चों को मैंने छोटे मोटे सांस्कृतिक गीत लिखे, मैं लोकगीत भी लिखती हूँ,
0: क्या बात,
1: मैं भजन भी लिखती हूँ, और मैं विधाओं में हल्का फुल्का सभी में लिख लेती हूँ
0: जी।
1: तो बस कुछ विधाएं जो मेरे से अभी छूटी हैं, और अभी थोड़ा नया नया शौक हुआ गजल लिखने का, तो 3-4 गजल भी है।
0: तो आप अभी आप फुल टाइम पोएटेस हैं या इसके अलावा कोई और प्रोफेशन भी है?
1: मैं शिक्षिका हूँ
0: जी,
1: 32 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया है, जूनियर हाई स्कूल में, मैंने यूपी में धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर
0: जी
1: मैंने 18 साल पढ़ाया कंटिन्यू, और अब दिल्ली आके शक्ति नगर चौक मेरा कॉलेज है शिमला आर्ट्स कॉलेज, और वहाँ मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ हिंदी एंड होम साइंस, मेरे दो सब्जेक्ट
0: जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत।

0: अब आते हैं हम दीपिका मैम पर। दीपिका जी, आपने कब चुना साहित्य को, कब लगा कि अब मुझे साहित्य में उतर जाना चाहिए पूरी तरह से?
1: जी, मुझे एक्चुअली आपने भी सवाल था आपका कि साहित्य ने आपको चुना या आपने साहित्य को चुना।
0: जी,
1: लगता है हम लोग इतने कैपेबल नहीं होते हैं, है ना जी। कोई भी फील्ड हम चुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी डेस्टिनी होती है। और ये शुरुआत मेरे भी बचपन में हुई। मैं अपने मामा जी के घर पर रहती थी, तो वहाँ पे म्यूजिक का बहुत माहौल था, संगीत वहाँ पे चलता रहता था। और बड़े बड़े संगीत, मतलब जो भी बड़े भी सोच उस सिटी के जो बड़े गायक वगैरह थे वो आते थे वहाँ पे। और गुलाम अली और इनको, ये फरीदा खानम जी हैं, मेहदी हसन जी हैं, या हरिवंश राय बच्चन जी, इनका सब चलता रहता था, माहौल इस तरह का था। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस रोल को बहुत ज़्यादा। और लेकिन स्कूल कॉलेज टाइम पर जैसे सब एक रोमानी सा इस तरह का लिखते हैं, उस टाइप का लिखती थी, ऐसा कोई सीरियस नहीं थी इस चीज़ के बारे में। फिर इधर जब कोविड में, मतलब जब उस समय ना बहुत मन सभी का उदास था, बहुत दुखी था, और सभी लोग सहमे डरे सहमे थे, तो वहाँ पे अंदर में आपके इतना जो तकलीफ और पेन था वो इस जरिए से बाहर आया, और वो खुद आया, वो खुद ही आया। लगता था कि किस तरीके से क्या, मतलब लगता था ना कैसे बाहर निकले, क्या करें, मतलब बड़ी तड़प और कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो वहाँ पे कलम चलनी शुरू हुई। और फिर वो मतलब एक रास्ता मिलता चला गया
0: और आप बढ़ते चले गए।
1: मंजिल कोई तय नहीं कि जो जैसे जैसे चलता रहे,
0: गो विद द फ्लो हो गया सब। जी, आपने बहुत बड़े बड़े नाम लिए, गुलाम अली साहब, हरिवंश राय बच्चन, ये काफी बड़े नाम हैं। जी जी, तो वो एक वक्त था जब एक शायरी या कह लीजिए आप कविताएं, उनका एक अलग ही रुतबा था। आज ओपन माइक हो गया है सब कुछ, जहां कुछ भी सीमित नहीं है, हम कुछ भी कह सकते हैं खुलकर। तो कितना डिफरेंस महसूस करती हैं आप उस टाइम के कंपैरेटिवली, अब कितना चेंज हो गया है कविताओं में?
1: चेंज तो मीची बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा चेंज है काफी। क्योंकि देखिए साहित्य का जो एक स्तर है ना, वो स्तर बहुत ऊंचा साहित्य का है। वो स्तर शायद अभी के जो साहित्य है उसमें वो चीज नहीं है, क्योंकि सबको जल्दी है कि हमें बस, मतलब जो भी है आपको आगे बढ़ने के लीजिए, या कह लीजिए कि लिखना है, कुछ भी लिखना है आपको, उसमें गहराई में नहीं जाना है आपको। और क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है ना, जैसे मतलब मंच है तैयार आपके लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो बस ये है कि हमें आगे करना है। वक्त उतना नहीं दे पा रहे ये भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उतनी गहराई में नहीं उतर पा रहे, मतलब ये मुझे डिफरेंस लगता है। और बाकी आप गहराई में जाते तो फिर पहले का साहित्य कहिए आप या अभी का साहित्य कहिए, वो बराबर है। जितनी गहराई में उतरते जाएंगे उतने देखिए मिलती है।
0: बट कुछ लोग इसको नेगेटिव भी कहते हैं कि शायद जैसे आपने कहा कि वो फीलिंग नहीं है, छंदबद्ध होकर नहीं लिख रहे हैं लोग, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी कहते हैं कि शायद लोग समझ पा रहे हैं साहित्य को, और ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं
1: लोग इसमें। मैं कहूंगी कि लोग इसमें ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक जरिया है कि आप अपना, अपनी बात को आप कह सकते हो, लोगों तक रख सकते हो, एक बहुत बड़ा जरिया एक है साहित्य, है ना। उसमें बहुत सारी साहित्य के अंदर, जहां तक विधाओं वाली बात आपने बोली, तो मुझे लगता है कि देखिए स्वतंत्र लेखन को किसी एक विधा में बांधना मेरे हिसाब से, बाकी लोगों का अपना सोच है, ठीक नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा एक फील्ड है कि आप किसी भी तरीके से अपनी बात रखिए, बस वो लोगों को छूनी चाहिए, उनकी बात, उनको बात उन तक पहुंचनी चाहिए, उनको समझना में आना चाहिए। बाकी विधा में लिखना या नहीं लिखना वो एक अलग, एक मुझे लगता है वो अलग स्टडी है, और वो अलग ओपिनियन हो सकता है। लेकिन लेख की, यहाँ साहित्य की बात जहाँ तक है, उसके लिए मुझे लगता है सीमाएं निर्धारित ना करें तो अच्छा है।
0: ओके जी।

0: जी के पास। तो पूजा जी, आपने कैसे चुना साहित्य को?
1: जी, मैंने साहित्य को जब चुना जब मैंने अपने भावों को सुना। क्योंकि जब भाव को हम सुनते हैं, अपने अंतरात्मा को सुनते हैं, तब हम साहित्य को चुनते हैं। क्योंकि उनको लिखना अलग, मैं कहूँगी मुझे विधा लिखनी नहीं, मैंने अपने भावों को लिखा सबसे पहले। जब मैं क्लास में बैठती थी तो मैं कहानियाँ लिखती थी, जो राजा रानी की कहानियाँ सुनती थी वो मैं कहानी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखती थी। तब मैंने अपने भावों को सुना और मन करके, और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद। जैसे मैंने बोला कृष्णा जी ने कि हर चीज में म्यूजिक है, एक थाप भी लगेगी तो म्यूजिक है, हल्की सी आवाज है तो म्यूजिक है। तो मैं म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, तो उन म्यूजिक के थ्रू मैंने अपने भावों को सुना और उन्हीं पर शब्दों को प्रयोग किया।
0: जैसे अभी हमने बात की, और भी जितने भी हमारी कवित्रियाँ हैं, सबके घरों में शुरू से ही संगीत को लेकर रहा है, फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई संगीत से जुड़ा हुआ था या कविताओं से जुड़ा हुआ था?
1: जी नहीं, मेरे घर में सिर्फ एक अलग अनुभव निकल के आई हूँ जो ये लिखती हूँ। ये मेरे फैमिली में सबके लिए सरप्राइज है जी। आप ये किस उस में आई है?
0: बिकॉज मैं अगर महिलाओं के बारे में बात करूँ, तो वो वक्त जब आप लिख रही थी या आप कहानियाँ जो है वो कह रही थी, तो बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। शायरी को इतनी तवज्जो, कहते हैं ना, घर में नहीं दी जाती थी। अब तो फिर भी फैमिली समझती है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्या फैमिली सपोर्ट कर रही थी?
1: जी, मेरी फैमिली ने मेरी कहानियां कभी पढ़ी ही
0: नहीं। ओके।
1: उन्हें ये पता ही नहीं था कि मैं कहानियां लिखती हूँ।
0: अब तक नहीं पता?
1: अब पता है
0: जी।
1: अब मैंने उन्हें बताया है कि मैं करती हूँ, तभी वो लोग सरप्राइज है। कि वो कहते हैं ना, जैसे बुद्ध जी को पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, तो कहते हैं तुम कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे?
0: तो क्या रिएक्शन था जब मुझे पता लगा, जब आपने बताया?
1: तब मैंने बोला, मैंने कहा मैं बचपन से लिखती थी, मगर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि पिता तो थे नहीं, कभी भाई था नहीं, मम्मी ऑफिस जाती थी और बहन है तो समझ लीजिए बराबर की थी, तो उन्हें उन्हें भी इतना ज्ञान नहीं था। तो बस यही कहानी थी कि बस मैंने अपने भावों को सुना, क्योंकि मम्मी थी नहीं, मेरे बताती नहीं, पापा थे नहीं जो मैं सुनते। क्योंकि वो होता ना, पिता के लिए एक बेटी कुछ होती है कि हाँ तुमने आज क्या करा, वैसा कोई पूछने वाला था नहीं।
0: अगर उस समय आपकी मदर को पता लग जाता कि आप पोइट्री जो है लिखती हैं, तो उस टाइम उनका क्या रिएक्शन होता?
1: मेरी मम्मी ने, जब मेरी मम्मी को पता चला, उन्होंने मेरी सारी कविताएं ना दिल से लगाते रखी।
0: क्या बात है, यही मैं सुनना चाहती थी।
1: तुमने कहा पूजा गा के मेरे फोन में भेज से, और वो सुबह शाम मेरी कविता सुनती थी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जी।

0: अब हम आते हैं प्रेरणा जी के पास। तो आपने कैसे चुना कविताओं को, या कविताओं ने आपको चुना?
1: मीत जी, मैं कहूँगी कि जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं चुनती है और बच्चा अपनी माँ को नहीं चुनता है, ये एक नियति होती है कि किसके गोद में कौन जाएगा, वैसे ही शायद मेरा जो मन है वो माँ का आंचल समझ के साहित्य को अपने मन की बात कह देता है। जैसे बच्चा डर जाता है तो माँ के गोद में जाता है, जैसे बच्चा कुछ कहना चाहता है जो किसी को नहीं कह पाता है तो वो उस आंचल को ओढ़ के सब कुछ कह पाता है, वैसे ही साहित्य मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, जो मैं अपने शब्दों में अपने भावों को ऐसे लिखते चली गई। और ये साहित्य में मैं आई या साहित्य ने मुझे चुना मुझे नहीं पता, बस भाव जुड़ते गए और वो एक माँ की तरह मेरा साथ देते रहे।
0: बहुत खूबसूरत। एक और सवाल है आपसे प्रेरणा जी, आपने आई थिंक ओपन माइक भी किए होंगे, मुझे जहाँ तक
1: एक किया है
0: और आपने कवि सम्मेलनों में भी भाग लिया होगा, तो कहाँ ज्यादा मजा आया?
1: मैं कहूंगी मुझे मंचों पर ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहाँ जब जनरल पब्लिक के बीच में हम पढ़ रहे होते हैं और वो हमारे भावों से जुड़ते हैं, या फिर मैं किसी स्त्री के लिए कुछ कह रही होती हूँ और उसकी आंखें नम हो जाती हैं या वो अपने से जोड़ लेती है, तो मुझे लगता है कि बस यही मेरे शब्दों की जीत हो गई कि मेरे जो भाव है

0: उसके भाव से जुड़ गए, क्योंकि जब हम ऐसे कवि गोष्ठियों में बैठते हैं तो वहाँ सीखते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं आ पाती है जब हम जनरल पब्लिक, जो आम सी जनता हो जिसको कुछ नहीं पता और फिर भी वो आपको समझ के आपके साथ जुड़ जाए, तो वो बात होती है। ओपन माइक को मैं कभी खराब नहीं कहती हूँ, एक ही बार गई हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यंग जनरेशन वहाँ पे कुछ कह रही है। अब मुझे लगता है डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका कुछ कहना है। Exactly. और वो ओपन माइक जो है वो उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो मुझे लगता है ओपन माइक भी बहुत अच्छी जगह है युवाओं के लिए।
1: आपने काव्य गोष्ठी की बात की, तो क्या पहले के कंपैरेटिवली अब काव्य गोष्ठी उतने स्तर पर नहीं हो पा रही है? अभी भी लोग जो है वो कराते हैं और लोग भाग भी लेते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, अभी हो रही है। हाँ, साहित्य का स्तर मैं कहूंगी कि काव्य गोष्ठियों में और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए
1: जी।
0: वो थोड़ा कम है पहले की काव्य गोष्ठियों से, अगर मैं ये करूँ, क्योंकि काव्य गोष्ठियों में हम सीखते हैं, हमें विधा सीखनी होती है, क्योंकि साहित्य में बस आए और अपने मन की कहते चले गए, जो मैं कह रही हूँ कि आंचल बना के और मैं कुछ भी कहते चले जाऊँ, लेकिन अगर मैं किसी विधा में आई हूँ, साहित्य में आई हूँ, तो मुझे सीखना जरूरी है, और वो काव्य गोष्ठी वो पाठशाला है, तो उसका स्तर कहीं ना कहीं ऊपर होना चाहिए। वही बात हो गई है कि गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, उस तरह की स्थिति हो गई है कि अब गवर्नमेंट स्कूल जैसी हो गई है साहित्य गोष्ठियाँ, तो बस हम कभी कभी चाय समोसे खा के भी आ जाते हैं।
1: अच्छा, एक और बात हम लोग बहुत सुनते हैं कि कवि या शायर तभी बनता है जब वो प्यार में पड़ा हो या उसकी खुद की कुछ फीलिंग्स रही हो उससे जुड़ी हुई, तो क्या ऐसा ही होता है हर बार, या आप दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए भी लिखते हैं कुछ?
0: मैंने जो पहली कहानी लिखी थी, छोटी जो मेरी लघु कथा थी, वो एक मेड की बेटी की थी, तो मेरी कहानियां हमेशा बहुत ज्यादातर समाज की होती हैं।
1: क्या बात है?
0: कि वो पढ़ नहीं पा रही थी और कैसे उसकी माँ ने मजबूरी में उसको भी फुल टाइम के लिए एक बच्चे संभालने के लिए लगा दिया था, जबकि उसकी भी पढ़ने की उम्र थी, और वो जिस बच्चे को संभाल रही थी उसी बच्चे की किताबें पढ़ पढ़ के वो उसको सिखाने लगी थी, और तब जो मालकिन थी उसको समझ में आया कि इसको पढ़ाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक गरीब घर की है तो उसको मतलब सिर्फ ये संभालने के लिए या पैसों की मजबूरी, तो वो ये कहानियाँ जो मुझे छू जाती हैं समाज को देखकर, वो मैं ज्यादा।
1: क्या बात है, अगर साहित्य को इतनी खूबसूरती के साथ और इतने सच बेबाक तरीके के साथ पेश किया जाए तो समाज का आईना ही कह सकते हैं हम।

0: प्रेरणा जी आप पर आते हैं, आपकी कोई रचना जो आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें।
1: साल बदला है और हर वर्ष एक कैलेंडर आता है और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमें सुने उसमें जितनी भी महिलाएं हों खासकर इस बात पे ध्यान दें उस कैलेंडर को।

0: पहले कहना अपनी बात।
1: क्या बात?
0: आईने में खुद को देख मुस्कुरा शाबाशी देना। आईने खुद को देख मुस्कुरा शाबाशी देना, जैसे माँ देती है ना जीत हार से परे, जैसे माँ देती है ना जीत हार से परे, कर्तव्यों के साथ स्वयं की सिंचाई भी करना। क्योंकि ये सारी टहनियाँ, क्योंकि ये सारी टहनियाँ जिन पे फूल खिल रहे हैं ना, वो टिकी है एक तने पर, वो टिकी है एक तने पर जो तुम हो। तो सुनो, स्वयं को देखना जरूर, और जैसे देखती हो हर छोटी सी बात, वैसे ही देखना खुद को भी।
1: सुनो, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत है सच में। और हम पूजा जी के पास आते हैं। पूजा जी, आपकी कोई रचना?
2: मेरी रचना है जो आजकल रिश्तों को लेकर है।

बहुत खूबसूरत। दीपिका जी आप पर आते हैं, आपकी कोई रचना जी जी मन से मिल।

0: लिखी तो मैं रखना चाहूंगी।
1: जी जी।
0: सूफियाना से इश्क की बेशुमार रवानी छोड़ गए, सूफियाना से इश्क की बेशुमार रवानी छोड़ गए, वक्त की दीवारों पर अमित कहानी छोड़ गए। जिसके आगे सब रंग फीके, जिसके आगे सब रंग फीके, रंगे मोहब्बत छोड़ गए, इश्क हकीकी करने वाले इश्क निशानी छोड़ गए।
1: क्या बात है।
0: इश्क हकीकी करने वाले इश्क निशानी छोड़ गए, चक्कर लगा के प्यार का पूरी दुनिया बता दिया। थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इसका मैंने पढ़ा था कि अमृता जी ने जब उनको बोला था कि आपने पहले पूरी दुनिया देख लो, उनको बार बार मना करती थी, वो बोलती थी आप पहले पूरा सब कुछ देख लो, उसके बाद जब अगर आप वापस आते पूरी दुनिया घूम के तो मैं आपको यहीं पे खड़ी मिलूंगी। तो उन्होंने अमृता जी के चक्कर लगा के बोला कि लगा दिया
1: मेरी दुनिया।
0: तो इसमें बड़ा सा ये शेर निकला है यहाँ से,
1: जी जी,
0: चक्कर लगा के प्यार का पूरी दुनिया बता दिया, एक सदके में प्रीतम के कायनात सुहानी छोड़ गए।
1: क्या बात है।
0: इश्क शायद इसे ही कहते, रूह तक जो पहुंच गए, खुदी को मिटाकर प्यार की सूरत दीवानी छोड़ गए, सूरत दीवानी छोड़ गए। और इसका अंतिम शेर है, कुछ कहे बिना कुछ सुने बिना इश्क की खातिर जी गए। वो चाय रख के आते थे और वो उनको कोई पता ही नहीं होता, तो अपना लिखती होती थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं एक दूसरे से। कुछ कहे बिना कुछ सुने बिना इश्क की खातिर जी गए, इश्क की खुशबू से तर बतर मिट्टी रुमानी छोड़ गए।
1: क्या बात।
0: मिट्टी रुमानी छोड़ गए।
1: बहुत खूबसूरत जी,
0: शुक्रिया। और मैं चार पंक्तियाँ
1: बिल्कुल
0: जी आपके लिए कहना चाहूंगी।
1: अच्छा जी, जी बिल्कुल जी।
0: यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग सभी देखिए सुकून के लिए, इंसान कहीं पे भी जाता है वो अपने सुकून ढूंढता है। तो उस पे बात है कि जिंदगी तेरी बज़्म में लाई कुछ इस तरह।
1: क्या बात।
0: जिंदगी तेरी बज़्म में लाई कुछ इस तरह, सोचा न समझा मुस्कुराई इस तरह।
1: क्या बात।
0: क्या पाना था क्या खोना था कुछ याद नहीं, क्या पाना था क्या खोना था कुछ याद नहीं, तेरी सुकून की छाँव में राहत पाई कुछ इस तरह।
1: क्या बात है। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। बहुत खूबसूरत। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। बहुत खूबसूरत रचनाएं थी आपकी और हमारे लिसनर्स जो अभी हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और लिसनर्स फीडबैक जरूर भेजिएगा। और जाते जाते एक और सवाल, और मैं इसका आंसर आप लोगों से सिर्फ एक लाइन या एक शब्द में चाहूंगी कि आपका हो। सबसे एक ही सवाल है, आप लोगों के लिए कविता क्या है? कृष्णा मैम, क्या है कविता?
2: जीवन का अधूरापन महसूस।

0: क्या बात,
1: जब जहर जिंदगी का पीना पड़े, तन्हाई का, हिम्मत का, हिज्र का, वहाँ ये जवाब होती है आपकी रचना, यही एक माध्यम होता है आपको, ये किसी को सुनाने के लिए नहीं, अपने आप को सुकून देने के लिए।
0: जी जी, रजनी जी आपके लिए क्या है कविता?
2: कविता भावों की सौगात है।
0: जब
2: हमारे मन में भाव उभरते हैं तो कविता स्वयं उठती है।
0: जी जी, क्या बात है। दीपिका जी,
3: मेरे लिए कविता ये कहूँगी कि सुकून की तलाश जो एक थी, आपने अपने अंदर की बहुत सारी चीजें आप निकालना चाहते हैं और एक जरिया ढूंढते हैं, तो वो जरिया मेरे लिए साहित्य है।
0: क्या बात है।
4: कविता मेरे लिए कृष्ण है, मेरी पहचान है, मेरा प्रेम है, इश्क है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। प्रेरणा जी,
5: मेरे मन का आईना है, रात का वो अंधेरा है, वो तकिया है जिस पे मैं अपने मन के भाव, अपने आंसू, अपनी सच्चाई कह सकती हूँ, और ये सबसे मिलता है मुझे।
0: बहुत खूबसूरत। प्रेरणा जी, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। वैसे सबके लिए, सबकी रचनाएं बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी आवाज़, वो कहते हैं ना कि बहुत नपी तुली हुई आवाज़ है, और एक किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कहीं लिखी थी कि जिन महिलाओं को अच्छी बातें करने की समझ होती है, उनकी बातें आशिकों को जन्म देती है, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आप यहाँ पर आए और इतनी खूबसूरत बातें आप लोगों ने हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई। वंस अगेन।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कच हटके और मैं हूँ आपकी अपनी
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज का जो स्टार है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यही जिम्मेदार है हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को अपनी धुन पर नचाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 70s और 80s के दौर के एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर की, जिनकी धुन को सुनकर ही लोग पहचान लिया करते थे कि ओके तो ये गाना है R.D. Burman यानी कि पंचम दा का। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि ट्रेंड सेटर्स होते हैं। पंचम दा वॉज वन ऑफ देम। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाते थे बल्कि म्यूजिक को बनाने का तरीका भी बनाते थे। जब पूरी इंडस्ट्री एक जैसी धुनों पर चल रही थी, तब इस शख्स ने ग्लास की बॉटल से, कंघी से जो कोम हम यूज करते हैं उससे, सांसों की आवाज से, सिक्कों की खनक से और यहाँ तक कि बारिश की बूंदों से भी संगीत बनाया। इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक में इंट्रोड्यूस किया जैज, रॉक, लैटिन, फंक और इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स। ना सिर्फ हिंदी सिनेमा की बल्कि पूरी दुनिया भर के म्यूजिक डायरेक्टर्स इनकी क्रिएटिविटी की मिसाल दिया करते थे। ऑलमोस्ट 3 decades तक इन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए थे। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, गुलजार साहब और आनंद बख्शी साहब जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसे गाने बनाए जो आज भी हर एज ग्रुप की प्लेलिस्ट में होता है। अच्छा, वैसे हमने ये नोटिस किया कि जो लोग भी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डामाडोल होती है। एग्जैक्टली ऐसी ही इनकी लाइफ भी थी, जो कि थोड़ी बहुत हिल डुल रही थी, पर उसके बावजूद भी इन्होंने अपने प्रोफेशन पर अपनी पर्सनल लाइफ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया। रादर ये अपने पर्सनल लाइफ के हर झटके के बाद प्रोफेशनली और ज्यादा निखर रहे थे। अब इसे क्या कहेंगे, नथिंग, जस्ट इग्नोर इट। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ R.D. Burman यानी राहुल देव बर्मन साहब की जिंदगी के कुछ हसीन किस्से। ये कहानी है उस संगीतकार की जिसने हर धुन में अपनी आत्मा डाल दी थी और इसीलिए ये बन गए हम सबके प्यारे पंचम दा।

0: अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: आपको बताती हूँ सिगरेट या तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स लेने के दो फायदे।
1: क्या बात, ये बात है।
0: पहला फायदा, आपके घर पर कभी चोरी नहीं होगी क्योंकि रात भर खास खास कर आपको नींद ही नहीं आएगी।
2: अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
0: दूसरा फायदा, आप स्पेशल ह्यूमन बन जाएंगे क्योंकि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बाकी लोगों से दो गुना ज्यादा हो जाएंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आरडी बर्मन साहब की, जिनका जन्म 27 जून 1939 कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। वैसे इनका नाम आरडी बर्मन राहुल देव बर्मन था, लेकिन हम सब इंडस्ट्री में इन्हें प्यार से पंचमदा कहते थे। खैर, इसके पीछे भी दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो मैं अभी नहीं शेयर करूंगी। आई विल टेक सम टाइम और बाद में आपको इन स्टोरीज के बारे में जरूर बताऊंगी। फिलहाल बता दूं कि इनके पिताजी एस डी बर्मन साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान दिग्गज संगीतकारों में से एक थे, और इनकी माताजी मीरा देव बर्मन भी एक मानी हुई गीतकार और संगीतकार थीं। अच्छा, अब इनके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हर वक्त इनके घर में मशहूर मशहूर गायक और संगीतकार आकर बैठा करते थे। शास्त्रीय कलाकारों से इनका रोज का मिलना जुलना होता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ बचपन में ही सीख रहे थे। वैसे इनका वक्त दूसरे बच्चों की तरह खिलौने खेलने में नहीं, बल्कि हारमोनियम, तबला और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलने में निकल जाया करता था। इनके लिए संगीत की शिक्षा तो घर से ही स्टार्ट हो गई थी, और उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी जब इन्होंने जन्म लिया था, क्योंकि इनके घर का माहौल ही ऐसा था कि हर वक्त वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की ही बातें हुआ करती थी। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि 9 साल की उम्र में ही आरडी बर्मन साहब ने एक ऐसी धुन बनाई थी जिसको इनके पिताजी ने एक फिल्म के गाने में यूज किया था। ये फिल्म थी फंटूश, 1956 में रिलीज हुई थी, और इसी का एक बहुत ही मशहूर गाना था। I

0: जा न जा।
1: गाना था है मेरी टोपी पलट गया, और इस गाने को अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार साहब ने। लिरिक्स थे साहिर लुधियानवी के, म्यूजिक था एस डी बर्मन साहब का, और डायरेक्शन थी चेतन आनंद जी की। अब भई ये गाना तो हिट होना ही था, और साथ ही वो जो धुन इनके पिताजी ने इस 9 साल के बच्चे से ली थी, वो धुन भी हो गई थी हिट। तो चलिए एंजॉय करते हैं आर डी बर्मन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और जल्द वापस आऊंगी और बताऊंगी कि इनके नाम के पीछे क्या थी वो दो स्टोरीज।

0: ओए बबली, पता यार आज मैं एक बाबा के पास गया और उन्होंने कहा मेरी कुंडली में दोष है, मैं जो भी काम करूंगा वो कांड में बदल जाएगा।
1: तो अच्छा है ना बंटी, बुढ़ापे में तेरे पास सुनाने के लिए किस्से तो मिल जाएंगे।
0: अरे यार किस्से तो तब सुनाऊंगा ना जब मुझे कुछ याद रहेगा।
1: क्यों?
0: बाबा ने कहा मेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी।
1: तो फिर तूने इस दोष का कोई उपाय नहीं पूछा?
0: ये भी पूछा, बाबा ने कहा अगर मैं रोज किसी लड़की को झूठी कहानियां सुना के पागल बनाऊंगा तो मेरी मेमोरी लॉस नहीं होगी। लेकिन हाँ उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने कहा बुढ़ापे में मेरे हाथ पर कांपने लग जाएंगे।
1: फिर तो सही है ना बंटी, कांपते हाथों से तो फोन तो यूज कर ही लेगा, लेकिन अगर पासवर्ड तेरे को याद नहीं रहेगा तो तेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? ऐसा कर जल्दी से ना कोई लड़की ढूंढ और उसे पागल बनाना शुरू कर दे।
0: वही तो कर रहा हूँ पागल।
1: तूने मुझे पागल बोला? चल ठीक है, थैंक यू। तेरे को पता है पागल का मतलब ना क्रेजी होता है, और क्रेजी का मतलब होता है आर्टिस्ट, और जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो नेचर वाइज बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। तूने इनडायरेक्टली मुझे ब्यूटीफुल कह दिया, थैंक यू।
0: अबे जा रे, अगर तेरे दिमाग में ये भी फितूर है ना कि तू खूबसूरत है तो आंखों में सिर्फ काजल लगाना ही काफी नहीं है, तू एक काम कर गले में ना नींबू मिर्ची और हाँ चप्पल भी लटका ले।
2: इस हंसी मजाक में क्या बंटी कभी समझ पाएगा बबली के दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी, कुछ हटके।
3: आज मैं आपको बताती हूँ सीट बेल्ट ना लगाने के दो फायदे।

0: छोटी बच्ची हो क्या?
1: पहला फायदा, आपकी गाड़ी फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि दरवाजे से उतरने की बजाय गाड़ी आपको खुद झटका लगने पर बाहर फेंकेगी।
2: शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
1: दूसरा फायदा, आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि चालान भरते भरते आपकी गाड़ी ही बिक जाएगी।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ

गाना मेरा बहुत फेवरेट है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये जो पब्लिक है। भाई आप तो सब जानते हैं, तभी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम बात कर रहे हैं पंचम दाह की। अच्छा, इनके नाम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि वो कौन सी स्टोरीज हैं जो कि बताती हैं कि इनका नाम आरडी बर्मन से पंचम दाह क्यों पड़ा। तो चलिए मैं उन्हीं लोगों के लिए बता देती हूँ, क्योंकि ये बचपन में इतने ऊंचे सुर में रोते थे कि जब इनका सुर नापा गया तो पता चला कि वो हमारी स्वर लिपि में पंचम स्थान पर, यानी कि पा वो सुर था जिसमें ये रोते थे, इसलिए इनका नाम पंचम दाह रख दिया गया। खैर, एक स्टोरी ये भी है कि अशोक कुमार साहब ने इनका नाम पंचम इसलिए रखा क्योंकि ये अक्सर पा पा पा पा पा ज्यादा करते थे, इसलिए इनका नाम अशोक कुमार जी ने पंचम दाह रख दिया। खैर, दाह का मतलब तो हम सभी जानते हैं, दादा, बड़े भाई को कहते हैं, इसीलिए हम सब इन्हें प्यार से पंचम दाह कहते हैं। अब खैर, इन दोनों स्टोरीज का जिक्र कई इंटरव्यूज में और यहाँ तक कि उनकी बायोग्राफी में भी लिखा गया है। रीजन चाहे कोई भी हो, इस खूबसूरत नाम से हम उन्हें आज भी याद करते हैं और उनके कुछ गाने जो कि बार बार रीमेक करके सुनते हैं, इसी बहाने वो हमारे दिल और हमारी जहन में हमेशा ही रहते हैं। अच्छा, वैसे अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो आपको काफी सपोर्ट मिलता है अपने पेरेंट्स का, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद से आगे बढ़ें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ नया सीखें, इसलिए वो बैकअप सपोर्ट नहीं देते अपने बच्चों को, वो उन्हें अलाउ करते हैं कि वो खुद से ग्रो कर पाए, अपनी कैपेबिलिटीज को खुद सर्च करें और उन्हें पॉलिश करके आगे बढ़े। ऐसा ही कुछ कर रहे थे एसडी बर्मन साहब भी, क्योंकि आरडी बर्मन उनके बेटे थे इसलिए उन्हें सारी सहूलतें मिल गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफी लंबे वक्त तक आरडी बर्मन साहब ने, यानी कि हमारे पंचम दाह ने, अपने पिताजी एसडी बर्मन साहब को असिस्ट किया था और बाकी सारे म्यूजिशियंस के साथ बैठकर वो तैयारी किया करते थे, म्यूजिक पर काम किया करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स पर काम किया करते थे। शायद यही वो रीजन है कि हमारे पंचम दाह एक अलग तरह के म्यूजिक के साथ आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं।

0: एक नज्म असली दोस्ती के नाम।
1: तेरे जैसा फ्रेंड ना कोई।
0: एक दोस्त है मेरी, घूमने फिरने का बड़ा शौक रखती है। जब भी मिलती है कोई ना कोई वेकेशन प्लान कर लेती है। कभी बीच कभी माउंटेन का सपना दिखाकर पापा नहीं मानेंगे, लास्ट मोमेंट पर कह देती है जैसी भी है, पर मुझसे बहुत प्यार करती है। पर अपने प्लान पर इकरार करवा कर खुद इनकार करती है। अगर आपके पास भी एक ट्रिप कैंसिल करने वाला दोस्त है तो रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।

0: मैं आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के दो फायदे।
1: कौन है ये पागल आदमी?
0: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
2: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
0: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।
4: I will tell you two advantages of cutting trees.
5: देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है।
4: पेड़ काटने का पहला फायदा, आप सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स भरने वाले नागरिक बन जाएंगे क्योंकि फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी आपको लाखों में खरीदनी पड़ेगी।
6: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
4: दूसरा फायदा, आपके साथ साथ आपका शहर भी पढ़ा लिखा हो जाएगा क्योंकि हर गर्मी में उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी।
3: ना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी।

आपने हमें इतने प्यार से बुलाया तो लो जी हम भी आ ही गए, क्योंकि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। रात बाकी बात बाकी में सपना हूँ मैं आपके साथ, और आज हम माड़ी बर्मन साहब

आपकी बातें कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने ये जाना कि उनकी जो काबिलियत थी वो इनबॉर्न थी, यानी कि गॉड गिफ्टेड थी। तभी तो 9 साल की उम्र में उन्होंने एक धुन बना ली जो कि एसडी बर्मन साहब ने अपनी फिल्म में भी यूज की। खैर, ये जो पहली बार होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि इसी के बाद जो मोटिवेशन आपको मिलती है वही मोटिवेशन आपको सक्सेस की सीढ़ियां भी चढ़वाती है। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रिक्ट फादर्स होते हैं ना, उनमें ये खूबी होती है कि वो अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर चलना तो सिखाते हैं, लेकिन जब उनके भागने का वक्त आता है तो उन्हें फ्री छोड़ देते हैं ताकि वो खुद सीखें, जितनी बार गिरे उतनी बार उठें और हर बार उनकी स्पीड बढ़ती जाए। ऐसा ही कुछ एसडी बर्मन साहब ने भी किया था। उन्होंने अपने बेटे को सारी सहूलतें ना देकर उन्हें अपना असिस्टेंट अनाउंस किया, जो कि बाकी सभी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ मिलकर काम सीखा करता था, नई नई धुनों पर काम किया करते थे। और शायद यही रीजन है कि आरडी बर्मन साहब को कई इंस्ट्रूमेंट्स की बारीकियों के बारे में बहुत जानकारी थी। वैसे एस डी बर्मन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था फिल्म 16 साल से, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। ये वाला जो गाना है ना, बहुत ही प्यारा है, और इसमें एक हारमोनिका की धुन सुनाई देती है आपको। क्या आप जानते हैं कि ये किसने प्ले किया था? None other than our very own talented आरडी बर्मन साहब ने। जी हाँ, ये कंप्लीट म्यूजिक उन्हीं के द्वारा बजाया गया था, और अभी तक तो वो सिर्फ असिस्टेंट थे, लेकिन एक मुकाम ऐसा आया जहां उन्हें लगा कि नाउ आई नीड टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ। तो उन्होंने काफी कोशिश की कि उन्हें कोई इंडस्ट्री में काम दे दे, इंडिपेंडेंटली वो किसी फिल्म का म्यूजिक बनाना चाहते थे, लेकिन एक नए लड़के पर कौन ही ट्रस्ट करता है। तभी एक ऐसे शख्स ने इस पूरी पिक्चर में एंट्री ली जिन्होंने आरडी बर्मन पर ट्रस्ट किया और दी उन्हें अपनी फिल्म। खैर, ये अलग बात है कि फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन आरडी बर्मन के लिए ये फिल्म बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रही, और यहीं से उनकी एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर शुरुआत हो चुकी थी बॉलीवुड में। कौन सी फिल्म थी और किसने दिया था ये मौका, अभी नहीं बताऊंगी। आप एंजॉय कीजिए इन म्यूजिकल ट्रैक्स को, वापस आकर आपको बताऊंगी उस शख्स का नाम।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

लाइफ में जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमेशा याद रहता है और ये पहली सीढ़ी होती है जिससे हम अपने करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। खैर, आर डी बर्मन साहब की लाइफ में भी ये फर्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि अब तक इंडस्ट्री में सब उन्हें एस डी बर्मन साहब के बेटे और असिस्टेंट की तरह देख रहे थे। किसी ने ये सोचा नहीं था कि एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर भी हम इन्हें जल्द देख पाएंगे। खैर, ट्रस्ट की बात है और वहीं पर एंट्री हुई एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने न केवल आर डी बर्मन साहब को बल्कि बहुत सारे आर्टिस्ट और कॉमेडियंस को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था उन पर ट्रस्ट करके, और ये शख्स थे उस वक्त के बहुत ही फेमस कॉमेडियन महमूद साहब। फिल्म थी छोटे नवाब, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में महमूद साहब के साथ हमने हेलेन, जॉनी वॉकर, राज किशोर जैसे कलाकारों को देखा था। और ये फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पाई थी और ना ही इसका म्यूजिक बहुत ज्यादा हिट हुआ था, लेकिन गुड न्यूज वॉज कि आर डी बर्मन साहब की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी थी। सबको ये पता चल गया था कि अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंटली म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। भाई, फेमस कौन नहीं होना चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए। ऐसा ही हमारे पंजमदा भी चाहते थे, एक ऐसा मौका जिससे कि वो अपना हुनर दिखा सके। और तभी 1966 में एक फिल्म की एंट्री होती है, फिल्म का नाम तीसरी मंजिल, और इसी से मिला वो मौका हमारे पंजमदा को। पर क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन साहब, वो कभी नहीं चाहते थे कि पंजमदा इस फिल्म का म्यूजिक बनाए। लेकिन इस फिल्म के एक्टर शमी कपूर साहब, जो कि आर डी बर्मन का म्यूजिक पहले सुन चुके थे और उनके बहुत बड़े फैन थे, वो चाहते थे कि सिर्फ वही म्यूजिक ने। तो भाई, हमारे कपूर साहब तो अड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म का म्यूजिक हमारे आर डी बर्मन साहब ने नहीं दिया तो मैं इस फिल्म में काम ही नहीं करूंगा। अब इस कंडीशन के आने के बाद तो फिल्म में पंचमदा की एंट्री होनी ही थी, और वो हो भी गई। फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म के कुछ गाने सुपर डुपर हिट हो गए। गाने थे, ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली जाने जहां, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, और ओ मेरे सोनारे। ये कुछ ऐसे गाने थे जो पूरे देश पर छा गए थे। उस वक्त हर कोई इन्हीं गानों के बारे में बात करने लगा था, और बस यही वो मौका था जिसकी तलाश पंचमदा इतने सालों से कर रहे थे। और फाइनली जब ये मौका उनके हाथ लगा तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और यहीं से एक पार्टनरशिप भी सामने आई। ये पार्टनरशिप ऐसी थी जिसकी वजह से ही बॉलीवुड को कुछ खूबसूरत, बेहतरीन और आज तक सुने जाने वाले गाने भी मिले थे। कौन सी थी पार्टनरशिप, किसने की थी ये पार्टनरशिप, और कितने टाइम तक चली ये पार्टनरशिप, आपको सभी कुछ बताऊंगी। पर फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है जी।

0: फैमिली अमीर हो जाएगी, क्योंकि मरने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा।
1: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके। एक नज्म असली दोस्ती के नाम,
2: तेरे जैसा फ्रेंड ना कोई।
1: हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा जमाना कहता है, पर बिल ना भरने का मेरा दोस्त हर बार नया बहाना देता है। कभी पर्स घर भूल आया, कभी कहे आज पैसे तू दे दे, पर मजाल है उसकी जो मेरी उधारी वापस कर दे। पर जैसा भी है मेरा दोस्त है, वो बात अलग है कि कंजूस बहुत है।
2: तेरे जैसा फ्रेंड ना कोई।
1: अगर आपके पास भी एक कंजूस दोस्त है तो रेडियो महारानी की तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे।

अच्छा वैसे ऐसा होता है ना कि अगर हमें लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं तो हमारी पार्टनरशिप जो होती है वो बहुत लंबी चलती है। ऐसी ही पार्टनरशिप हमारे पंचम दा को भी मिल चुकी थी और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और आज हम पंचम दा की बातें कर रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे खूबसूरत गीत दिए इस फिल्म इंडस्ट्री को जो आज भी हमारे दिलों में हमारे जहन में जिंदा है। खैर इस पार्टनरशिप का रिजल्ट ये रहा कि फिल्म इंडस्ट्री को पूरे 500 मेलोडियस सॉन्ग्स मिले हैं। जी हाँ ये पार्टनरशिप थी किशोर दा और आरडी बर्मन साहब को। वैसे दोनों ही वर्सेटाइल थे, एक म्यूजिक कंपोजर जो कि इंडियन बीट्स में वेस्टर्न बीट्स को मिक्स करके गाने बनाया करते थे और एक थे हमारे नखरीले किशोर दा जो कि हर गाने का अंदाज ही बदल दिया करते थे। फिल्म राज जो कि 1963 में रिलीज होने वाली थी उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना दोनों ने पहली बार साथ किया था। गाना था लाले दी जान जरा रुक जा, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई और एक डिब्बे में बंद होकर रह गई। पर इस जोड़ी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हम लोगों को मिले कुछ खूबसूरत से गीत। ये शाम मस्तानी, ओ मेरे दिल के चैन, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जिंदगी के सफर में चिंगारी कोई भड़के, भाई ये कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जिन्हें आज भी हम अगर सुनते हैं तो बिल्कुल फ्रेश साउंड करते हैं। खैर पंचम दा ने एक और जोड़ी बनाई थी किसी के साथ, ये दोस्ती भी बहुत सालों तक चली या यूं कहें कि उनकी आखिरी सांस तक ये जोड़ी बनी रही। किसके साथ थी ये दोस्ती, यहाँ एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ, कोई ऐसा जो कि दिल के बहुत ज्यादा करीब था। तो चलिए आप गेस करते रहिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तब तक मैं आपको एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक गिफ्ट कर देती हूँ।

0: आपको बताती हूँ सीट बेल्ट ना लगाने के दो फायदे।
1: छोटी बच्ची हो क्या?
0: पहला फायदा, आपकी गाड़ी फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि दरवाजे से उतरने की बजाय गाड़ी आपको खुद झटका लगने पर बाहर फेंकेगी। दूसरा फायदा, आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि चालान भरते भरते आपकी गाड़ी ही बिक जाएगी।
2: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ

0: Bonito!
1: अब वो आ गया, देखो।

भाई पंजन ना अपने म्यूजिक के लिए तो फेमस थे ही, साथ ही अपनी दोस्ती के लिए भी बहुत फेमस थे। ये दोस्त कम बनाते थे, लेकिन जितने भी दोस्त इनकी जिंदगी में थे वो सब बहुत ही स्पेशल दोस्त थे। मुझे लग रहा है कि आज ही मैं सेलिब्रेट कर लूं फ्रेंडशिप्स डे, क्योंकि कल भी करने वाली हूं। खैर उसमें भी आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे फिल्मी बेस्ट फ्रेंड्स की हम कल बात करने वाले हैं। लेकिन आज बात कर लेते हैं पंचमदा की एक और ऐसे दोस्त की, जो कि उनकी लाइफ में बहुत ही स्पेशल रोल प्ले किया करते थे। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी आशा ताई थी। हम में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि आशा ताई आरडी बर्मन साहब की फर्स्ट वाइफ नहीं थी। इससे पहले 1966 में रीटा पटेल से पंचमदा ऑलरेडी शादी कर चुके थे। ये शादी कुछ 4 साल चली और 1971 में विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। और यही वो वक्त था जब पंचमदा के गाने कुछ अलग ही अंदाज में निकल कर आ रहे थे। भाई दिल टूटा हो तो गाने तो अपने आप ही बनते हैं और कुछ हटके बनते हैं। खैर यहाँ पर पंचमदा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अकेलेपन ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया था, तभी उनकी दोस्ती आशा ताई के साथ और ज्यादा गहरी होती गई। अच्छा क्या आप जानते हैं कि पहली बार ये दोनों कब मिले थे? इन दोनों की मुलाकात 1956 में हुई थी, जब आशा ताई 23 और पंचमदा सिर्फ 17 साल के थे। जी हाँ, पंचमदा आशा ताई के बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने आशा ताई का एक मराठी गाना सुना और उसको सुनने के बाद तो ये उनके फैन ही हो गए और हमेशा से उनसे मिलना चाहते थे। और जब फाइनली इन्हें मौका मिला आशा ताई से मिलने का, तो इन्होंने जाते ही उन्हें कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे आपसे ऑटोग्राफ चाहिए। ये सुनकर आशा ताई बहुत हंसी थी और उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर वो इनके कंपोज किए हुए गाने गाएंगी। दोनों की जोड़ी ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत से गीत इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए और आशा ताई का ये कहना बिल्कुल सही साबित हुआ कि पंचमदा ने मेरी ऐसी ऐसी आवाजें दुनिया के सामने रखी हैं जो मुझे भी नहीं पता था। खैर दोनों की शादी 1979 में हुई और उसके बाद इस जोड़ी ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। पर वो कहते हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप फ्रेंड्स हैं तो जरूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। दोनों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन वहीं पर्सनल लाइफ में कुछ ग्रजेस थे एक दूसरे को लेकर। इसलिए विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने सेपरेट होने का फैसला कर लिया और दोनों साथ में सारा दिन काम किया करते थे और रात को अपने अपने घर चले जाया करते थे। खैर ये अलग बात है कि दोस्ती दोनों ने ही अपनी आखिरी सांस तक निभाई। वैसे कहते हैं ना कि दोस्त कभी अलग नहीं होते, प्यार तो फिर भी कम हो सकता है।

0: बंटी, तेरी आँखें क्यों सूजी हुई हैं?
1: पता नहीं यार, किसी ने ना मेरे बैग में हार्ट शेप चॉकलेट रख दी और यार उसे मम्मी ने देख लिया।
0: हाँ, तो फिर तेरी मम्मी ने तुझे बहुत मारा होगा।
1: नहीं नहीं यार, चॉकलेट को मम्मी ने बीच में से तोड़ दिया, आधा खुद खा लिया आधा बहन को खिला दिया।
0: फिर तेरी आँखें कैसे सूज गई?
1: यार चॉकलेट के साथ में एक लेटर भी था और मैं साफ साफ लिखा था कि अकेले ही खाना, किसी चुड़ैल को मत खिला देना। अब मैं यही सोच रहा मम्मी और दीदी को कैसे बताऊं कि कोई लड़की उनको चुड़ैल कह गई। बस यही बात सोच सोच के रात भर सोया नहीं और मेरी आंखें सूज गई।
0: लेकिन बंटी, तुझे कैसे पता चला कि वो चॉकलेट और लेटर किसी लड़की ने रखा था? मतलब तुझे किसी पे शक है क्या?
1: हाँ, एक लड़की है मेरी लाइफ में और मुझे लगता है वो मुझे लाइक करती है।
0: अच्छा, कौन है वो?
1: पता है, कुछ दिन पहले ना एक लड़की का कॉल आया था और वो बड़े प्यार से मुझसे बातें करके मेरी सारी डिटेल्स ले ली उसने और कहने लगी आपकी कॉल बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है ये चॉकलेट उसी ने भेजी
0: है। तो सारी जमा पूंजी से इसके लिए चॉकलेट लाई थी, पूरे 30 रुपए लग गए और ये पागल सारे के सारे क्रेडिट उस कस्टमर के वाले चुड़ैल को दे रहा है।
1: कुछ कहा तूने?
0: नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ।
1: ये एक मिनट, कहीं तूने तो वो चॉकलेट नहीं रखी?
0: मैं क्यों मैं बात करूंगी तेरे पे पूरे 30 रुपए?
1: क्या, एक मिनट, तुझे कैसे पता वो चॉकलेट 30 रुपए की थी?
0: मेरे पास तेरे से बात करने के फालतू टाइम नहीं है, जा यहाँ से। क्या ये क्या जान जान के देख रहे हैं?
2: इस हंसी मजाक में क्या बंटी कभी समझ पाएगा बबली के दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ।

एक दौर ऐसा आता है जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं, पर जब वक्त बदलता है तो जो पीक पर होते हैं धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ पंचम दा के साथ भी हो रहा था। अब क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की एंट्री होने लगी थी, तो ऑफ कोर्स उनका म्यूजिक पुराने म्यूजिक से कुछ हट के आने लगा था और लोग उन पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगे थे। अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी पंचम दा के म्यूजिक को थोड़ा सा आउटडेटेड समझने लगे थे, इसलिए अब पंचम दा के पास कुछ कम काम आने लगा। और यहाँ तक कि लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि पंचम दा अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चला है। लेकिन इंसान और महान इंसान में सिर्फ महान शब्द का ही अंतर नहीं होता, बल्कि उनके पैशन और डेडिकेशन का भी फर्क होता है, क्योंकि एक महान इंसान कभी भी हार नहीं मानता और अपनी डेडिकेशन को हर वक्त प्रूव करने के लिए कुछ नया सीखता रहता है। पंचम दा ने भी कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत सारे बदलाव अपने म्यूजिक में लिए। तभी तो 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 लव स्टोरी में विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर से उन पर ट्रस्ट दिखाते हुए अपनी फिल्म का म्यूजिक उनके हाथों में सौंप दिया और उनके भरोसे को पूरी तरह से प्रूव किया पंचम दा ने। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही पंचम दा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर जाने से पहले एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कुछ ना कहो, रिमझिम रिमझिम, ऐसे खूबसूरत गीतों से उन्होंने अपनी काबिलियत को एक बार फिर से दुनिया के आगे प्रूफ

अपने म्यूजिकल करियर में पंचम दा को पूरे 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिले। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने गाने दिए। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र जी के साथ उन्होंने हर तरीके के गाने बनाए। अब चाहे वो रोमांस हो, दर्द हो, गजल, कव्वाली, डिस्को या फिर वेस्टर्न बीट, हर बार पंचम दा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। खैर, इसी चीज को देखते हुए 1995 में फिल्म फेयर में नए संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए आरडी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट को भी स्टार्ट किया गया। कई फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जीतने के बाद भी पंचम दा कभी भी नेशनल अवार्ड तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन हर बार उनकी ऑडियंस ने उन्हें भर भर के प्यार दिया, जो कि किसी अवार्ड से ऑफकोर्स कम नहीं होता। पंचम दा ने अपने हर अंदाज को गाने की शक्ल में अपनी ऑडियंस के सामने रखा। अब चाहे वो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ मेरे दिल के चैन, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये कुछ ऐसे गाने थे जिन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ 4 मिनट के गाने में पिरो कर रख दिया था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से राहुल देव बर्मन उर्फ आरडी बर्मन उर्फ हमारे पंचम दा को सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के सबसे महान लेजेंड्स के रूप में हम हमेशा ही

याद करते रहेंगे। और जैसा कि आशा भोसले जी के एक गाने में कहा गया है, पंचम आई मिस यू सो, ऐसा ही हम भी कहते हैं कि पंचम दा वी मिस यू सो। हम आपको बहुत बहुत बहुत याद करते हैं और ऐसे संगीतकार कम ही इस दुनिया में मिलते हैं जो कि अपने जाने के कई सालों बाद भी उतने ही प्यार से, उतने ही आदर और सम्मान से याद किए जाते हैं। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था। आई होप आपने भी इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो नंबर है मेरा 9654896896। तुरंत अपना फोन उठाइए और मुझे बताइए कि आपने इस शो को कितना पसंद किया। खैर, आप सभी के लिए फ्रेंडशिप डे पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि मैं आपको कल देने वाली हूँ, तो कल मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। समय यही है 8 से 10, फ्रीक्वेंसी 89.6, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़िएगा और अपने सरप्राइज को एंजॉय कीजिएगा। वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए इजाजत, फिर कल मुलाकात होगी आपसे सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको पंचमदा की कुछ खूबसूरत यादों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: तीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का,

0: क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्जुन नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: सीधा साधा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ठीक है सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए

0: वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: खैर अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो कहाँ चली।
0: बाय।

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी और तुमसे?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: क्राइम से जा।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किसे पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने, नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

स्ट्रॉज, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम।

आपको याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितने

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहाँ पे आ जाता है ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही करें तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिर जी मैं सर 6-7 ले लेते
1: हैं। नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती
4: है। यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की, एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है? कितना पैसा लगता है 4 साल का, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9 to 10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा। yes. और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में। आपकी हंसी से पता लग रहा है, घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है? आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों आपका क्यों है, जवाब दो
6: सर। हमारे लिए टाइम भी उतना ही

0: वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
1: सर, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था, 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने। वहां पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहां पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
0: अभी आपकी एज कितनी है?
1: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
0: 16 साल?
1: यस सर।
0: तो आपके घर वाले खुश है?
1: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
0: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। जो आप कर रहे हो वो सही है।
1: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया। बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
0: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे। प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
1: Sure,
0: तो एक सॉल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सॉल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे। बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
2: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
0: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
2: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस 1 साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की, हाँ फ्रॉड है।
0: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
2: हाँ मैंने किया है।
0: आपने कितने पैसे दिए थे?
2: मैंने दिए थे 500 रुपए, उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने 4th डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसे हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
0: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, AI की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर 1, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया

सीखना या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1 लाख लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही है, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडैप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो, अगर ये कर सकते हो। यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा, कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में,
एजुकेशन मतलब क्या, कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में, और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पे सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है। तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं।

बनाने से पहले मुझे ये समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे, फिर वो स्टडी करके फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू AI। अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा, कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा ChatGPT पे जाकर लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो ChatGPT पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा, उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जाकर के मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में, वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो AI वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें AI की वॉइस है तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे, उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया 10 दिन किया रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन को समझ नहीं आया बेकार है छोड़ दो, ऐसे नहीं करते ना, 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10 यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है क्या मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो AI जनरेटेड वीडियोस है इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है AI जनरेटेड साउंड को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट ChatGPT से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कॉन्टेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन है शयार्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रुप प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करती है वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है। रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा